फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के

0: गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: मित्रता एक ऐसा शब्द है जिसके आगे दुनिया के सारे रिश्ते छोटे प्रतीत होते हैं। दोस्तों, बाल्यकाल से ही मित्रता का गुण सीखना नहीं पड़ता, बल्कि ये प्राणी स्वभाव की सहज प्रवृत्ति है। पशु और मनुष्य दोनों में ही ये गुण पाया जाता है। मित्र दो अक्षरों का एक ऐसा शब्द है जिसके होने मात्र से संभल की परिसीमाएं अनंत गति से व्यापकता का स्वरूप ले लेती हैं। मित्र बनना या बनाना सहज प्रक्रिया अवश्य है, परंतु इसे जीवन पर्यंत निभाने की कला अत्यधिक कठिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के परिवेश में मितान की संस्कृति घुली मिली है। हम जानते हैं कि मित्र हमारे जीवन के हर सुख दुख में खड़ा रहता है। आज श्री कृष्ण सुदामा दुर्योधन कर्ण की मित्रता के पौराणिक संदर्भों को कौन नहीं जानता। मित्रता एक ऐसा गुण है जिसे किसी भी आयु में प्राप्त किया जा सकता है। मित्रवत भाई बहन पिता माता और स्वयं मित्र का मिलना उत्तम भाग्य की निशानी है। मित्रता व्यक्ति में परोपकार का भाव जागृत करती है। मित्रता सद्व्यवहार देती है और मित्रता संकट के समय में भी साथ देती है। मित्रों, मित्र पाकर उसे बनाए रखना बड़ी चुनौती भरा कार्य है। मित्र का दायित्व अपने मित्र को गलत राहों में जाने से बचाना भी है। सही राह के लिए संबल और मार्गदर्शन देने की अहम भूमिका भी मित्र का ही कर्तव्य है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को उसके मित्र चुनने में सतर्क रहना चाहिए। संगत गुण अनेक, सच्चरित्र सद्भाव युक्त गुणों से व्यक्ति युक्त की मित्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होती है। ये भी एक पक्ष है कि सुख के समय साथियों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु दुख के समय सच्चे मित्र ही आपके सहयोगी बनते हैं। अक्सर हम पाते हैं कि बाल सखा निस्वार्थ भाव से मिलते हैं। उनसे मिलकर जो स्नेह की अनुभूति आपको होती है, उसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन होता है। मित्रों, जीवन में सफल बनना है तो अच्छे मित्रों की खोज करिए। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर, ऐसी लोक्ति हम सब ने सुनी है। बुद्धिमान सच्चरित्र सद्भावपूर्ण मैत्री भाव रखने वाले मित्र बनाना हमेशा श्रेयस्कर होता है। अच्छा मित्र कदम कदम पर आपके साथ रहता है, आपकी छोटी छोटी गलतियों के प्रति आपको सतर्क करता है। अंग्रेजी में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अर्थात मुसीबत में साथ रहने वाला ही सच्चा मित्र है। मित्रों, मित्रों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं पीठ के पीछे उसकी प्रशंसा और आवश्यकता पाने पर मित्र की सहायता भी करनी चाहिए। मित्रता से आनंद की प्राप्ति होती है और अपनी समस्याओं का निराकरण भी। हफीज होशियारपुरी की दो पंक्तियां हैं, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। सच्चे मित्र से ही अपनी समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है और भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। अच्छे मित्र बनाइए, अच्छी संगत से जीने के मायने ही बदल जाते हैं। कहते हैं दिया मिट्टी का है या सोने का, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर,

0: महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कितना साथ देता है, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अच्छे मित्रों को चुनें जो जीवन पथ सुगम करे, जीवन को प्रफुल्लित करने में आपके साथ हों।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कबीर भजन। कार्यक्रम के आरंभ में हेमंती शुक्ला के स्वर में ये कबीर भजन सुनिए, पंडित भीमसेन जोशी के संगीत से सजा हुआ।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोंकणी के स्वर में ये कबीर भजन आपने सुना। अगला भजन भी इन्हीं के स्वर में है, इसे आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून दिल की आरती
4: सुरीली संदली।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में ये कबीर भजन आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, और इस कबीर भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम कृषि चर्चा में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धर्मजयगढ़ समीउल्लाह खान से फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता विषय पर वार्ता सुनिए।
1: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उन पोषक तत्वों का पूर्ति हम अपने भोजन से करते हैं, और हमारे भोजन में वही पोषक तत्व हमारे शरीर तक पहुंचते हैं जो अपने खेतों में हम जिनका समावेश करते हैं। तो बात आती है कि वो पोषक तत्व जो होने चाहिए खेतों में और खेतों के माध्यम से होते हुए पोषक तत्व पहुंचने चाहिए हमारे शरीर तक। तो आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्य प्रकार के पोषक तत्व है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास पौधों के लिए। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा जो हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके साथ आयरन मैग्नीज जिंक निकल इत्यादि बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और सारे पोषक तत्वों का एक हमारे पौधों के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वनस्पति वृद्धि पुष्पन फलन, तो इन सभी स्थितियों में अलग अलग न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अमूमन किसान भाई हम एक गलती करते आते हैं, हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास के लिए तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जैसे मैंने बोला कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, और बहुत भांति भांति प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो वो हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और सीधे हम यूरिया डीएपी या इत्यादि पोषक तत्वों के स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं, भूमि में अंधाधुंध उन्हीं तत्वों का समावेश करते हैं। इससे होता क्या है, अस्थायी तौर पर हमारा पौधा है हरापन दिखाता है, उत्पादन देता है, लेकिन उसके प्रोड्यूस में उस उत्पाद में अगर हम धान से चावल बनाते हैं, दाल उत्पादन करते हैं, तो उसमें फाइबर प्रोटीन एमिनो एसिड सेलेनियम और इत्यादि जो चीजें होनी चाहिए क्या वो होती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जो खा रहे हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन का एक समुचित फ्लो होता है विभिन्न अवस्थाओं में, तो वो हार्मोन का फ्लो क्या हमारे भोजन से प्रभावित और प्रभावित हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में शुगर बीपी और बहुत से प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। इसका कारण क्या है, हम वर्कआउट करते हैं, हम अपने नियमित जीवन शैली को अपनाते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद भी हम भोजन भी ले रहे हैं, तो उस थाली में वो चीज हमारे बॉडी को क्यों नहीं पहुंच रही है। इसी का मैं आप लोगों से एक चर्चा कर रहा हूं कि हमारे खेत में अगर पोषक तत्व तो सही होंगे तो हमारे शरीर या हमारे थाली पे वो पोषक तत्व तो सही तरीके से पहुंचेंगे, अन्यथा ये संतुलन और ये समीकरण बिगड़ेगा, तो इसके दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं, तो यूरिया है हमारे बीच में, वायुमंडल से जो बारिश होती है हवा है हमारे बीच में, उसके अलावा हम और तरीके भी आजमा सकते हैं, जैविक खाद के तौर पे, हरी खाद के तौर पे, मिट्टी के स्ट्रक्चर मिट्टी के टेक्सचर को सुधारें, हवा का संचार बढ़ाएं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसमें ग्रोथ बढ़ाएं, हम अपने माइकोराइजा राइजोबियम इत्यादि का समावेश करें, ताकि जो भोजन हम उगा रहे हैं अब अपने खाने के लिए तो उगा रहे हैं, और अगर वो हम अपने थाली पे वो पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे लिए वो खेती बहुत फायदेमंद नहीं होगी, और एक समय के बाद हमको पुरानी पद्धति पे लौटनी पड़ेगी, मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग कर रहे हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर हमारे उत्पाद में केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई दवा नहीं होना चाहिए, किसी रेजिडुअल या कोई अवशेष नहीं होने चाहिए। अगर हम उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज है वह वायलेट होंगी और हमारा एक्सपोर्ट खराब होगा। तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने उर्वरकों के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान दें, मिट्टी को विभिन्न प्रकार के उर्वरक के माध्यम से उर्वरक दें, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रखें, फसल का चक्रण भी करें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगाएं, कुछ समय के लिए मिट्टी को रेस्ट भी दें। हम ये छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और ये पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे, खेत भी हमारा सही रहेगा, फसलों का बढ़वार भी सही रहेगा, और एटलीस्ट हमारे समाज का एक सेहत भी सुधरेगा। तो ये मेरा एक संदेश है, हम सभी मिलकर इसका पालन करेंगे और अपने फसलों के उत्पादन को सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता विषय पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धर्मजयगढ़ समीउल्लाह खान से ये वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस भाग 44 का प्रसारण आप सुनेंगे। देश का नाम सुनते हैं 6:50 पर। 7:05 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का समय 7:35 का। 7:45 पर आप सुन सकेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 8:30 पर। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। 9:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे 10:00 से आकाशवाणी रायपुर से। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। 11:00 से शाम 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। शाम 5:00 हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। झलकी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है योग से रहें स्वस्थ और निरोग। क्रम होगा करियर एडवाइज। चर्चा का विषय सह अस्तित्व का हाथ बढ़ाएं, जीव जंतुओं संग दुनिया सजाएं। साथ ही चर्चा का विषय मादक पदार्थों के सेवन का दुष्प्रभाव। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कृषक अपनी कंपनी स्वयं बनाएं, FPO से बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार। यह है विषय आज की नसीहत का। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। 9:00 से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आतंकवाद थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा रात्रि 9:25 पर। रात्रि 10:00 हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध संगीत और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें का समय रात्रि 10:30 का। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: FM 107.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 44। स्वर वाणी जयराम और राजेंद्र काछरू का है। आकाशवाणी की प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बाल चरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

अभी आप वाणी जयराम और राजेंद्र काछरू के स्वर में रामचरितमानस गान भाग 44 का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरितमानस गान अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है

0: अति भूयं जय जय स्वदेश सम्मान, जय जय स्वदेश सम्मान।
1: समूह स्वर में अभी आप ये पारंपरिक देशभक्ति गीत सुन रहे थे। इसी के साथ अब कार्यक्रम देशगान समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 6:55 होने वाले हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आरंभ में ये गुलिस्ता हमारा फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते

हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्द कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: ये दो गाना मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ तिरंगा फिल्म से आप सुन रहे थे। संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत तुम बिन इस फिल्म से आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। अनवर के बोल और निखिल विनय का संगीत आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com।

0: है मेरी हमरत, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: उदित नारायण और सपना किस्मत में यलगाल फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया। सुदर्शन फाकिर की बोल और चन्नी सिंह का संगीत था इस गीत में। कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे सत्यकाम फिल्म का गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और मुकेश के स्वर में। कैफे आजमी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। ये गीत हम आपको सुनवाएंगे इन संदेशों के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में सत्यकाम फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया। किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज़, कैफी आजमी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाश

आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम झरोखा में आज हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की। दोस्तों, भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारी यही विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं का उचित लाभ दिलाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान शिक्षा पर दिया गया है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई बाधित न हो। विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण। विभिन्न सरकारी नौकरियों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जाता है। स्वरोजगार, लघु उद्योग और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं पर आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है आवास और आधारभूत सुविधाएं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है और वहां सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। समाज में शांति, भाईचारा और आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव या असमानता को कम करने के लिए प्रशासन को संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके सभी नागरिक समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम इसी भावना को साकार करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यकों का विकास नहीं, बल्कि समावेशी और संतुलित विकास के माध्यम से पूरे देश को मजबूत बनाना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जहाँ हर नागरिक को सम्मान, अवसर और विकास का समान अधिकार प्राप्त हो। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और सुनिए ये गीत, दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संडली।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम भाजे मादर। कार्यक्रम में ध्रुवाराम मरकाम और दुखिया भाई के स्वर में ये लोकगीत सुनिए।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

भरतलाल हरिंद्र और ध्रुवाराम के गाए इस गीत लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 7:55 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद समाचारों का अनुप्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे से। 8:30 पर समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे 10 बजे। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने, सुर मीन इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर

0: जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंता भी रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना

0: के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो, मोर भुइया के ये अंक मा बेरा बेरा में हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार मन से आपके मुलाकात करवाथन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम मा आज हमर पहुना है वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर

0: शुक्ल।
1: लोक परंपरा, संस्कृति और साहित्य ये आपस में एक दूसरा से ऐसे मिलते हैं कि जिला अलग अलग देखे के मन नहीं हुआ, या ये कहे जाए कि माटी में बगरे एक एक कण आपस में मिलके जिन चीज ला बनाते वो हमार परंपरा होते, और परंपरा जब जुन्ना बखत ले चलत आते तो संस्कृति बन के और हमार आघू में आते, और संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते और वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमार छत्तीसगढ़ के भुइयां में बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जिन मन यहाँ के भुइयां के प्रताप लगाइन लिखिन और जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुँचाए के उद्यम ल करिन। हमार संस्कृति, हमार साहित्यकार मोर भुइयां के एक ऐसे मंच जहाँ ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला, या ये कह जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत मन ला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन आमंत्रित करथन, और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जिला एक कवि के रूप में जानता हो, एक साहित्यकार के रूप में जानता हो, तो आज हम उनखर मन ले गोट बात करबो। सुरजीत जी, आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कार्यक्रम।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुरजीत जी, वैसे तो आप मन ला हमार संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं, आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते।
2: मैं पहले पहले तो आप ला बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुला आमंत्रित करे हो आप, जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करते हैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने, खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ, श्री द्वारका प्रसाद विप्र, कबीरनाथ जी कश्यप, सुंदरनाथ जी शर्मा, आज़ादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखी देश की आज़ादी पर, तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास सातवां दशक में आता कैसे परिवर्तन आ गए, लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार ला मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर की माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम अपन महतारी के मुंह से हम ओकर बोली ला ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसत, और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल नहीं कहा अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठियाते दाई या गोठियाते, और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते।
1: संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे, जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन मा यहाँ के सेवा करा थे, लेकिन नान्हे लैका के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन मा जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहिस और आगु के जीवन
2: ये,
1: कैसे
2: ये बात बढ़िया पूछे आप मन। मोर जन्म पंजाब के पंजाब पाकिस्तान में हवे, अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावलदीन, लाहौर से छठवा स्टेशन पर थे, वहाँ मोर जन्म हुईस, और जब ये देश के बंटवारा हुईस तब मोर उम्र 8-9 साल के रहीस। तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए, मोर अच्छे तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही नवा घर बना रहे, हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी।
1: सुरजीत जी, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस, ओखर हृदय स्थल में स्थित हमर छत्तीसगढ़, पंजाब ले चल के वो नान्हे लड़का 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस?
2: हम जब ये बंटवारा हो हम वहां से रवाना हो गए, अमृतसर होत, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मेरठ होत हो हमन जबलपुर आ गए, जबलपुर से घूमत घामत हम इंदौर चले गए, इंदौर से फिर चले आए हमन रायपुर अचानक। काबर की हमार पिताजी बताइस कि हमार जो बाबा है वो है कंडेल में रहते, हमार बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करें कि हम नीचे चलबो, और हम सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे, और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ीस वो गाँव। तब हमला लोग मन बताई मोर पिताजी है एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाइस, और एक तरफ थोड़ बहुत जो सामान है से तेरा रख के हम मन पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए।

0: एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दिस। एक बात जरूर मोला आज याद आते कि साहू परिवार हा तन मन और धन से हमार परिवार के सेवा करिन, अलग से किराया में घर ले दिन, जहां हमार पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करिस। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहां आत हो गयो, हमारे परिवार घर आ गए, हम मन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो, हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे, तो हमारे बाबा मल्ला बताइस ये मल्ला तुम्हारे छत्तीसगढ़ी बोले पर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले बोल पूरा नहीं बोल सके, अधूरा बोले, और मैं यहाँ बाजू बैठ के सुनो पिताजी लभी ऊ लाई। तब वो मन जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान भी खरीदे पर आए तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो। और वही मेरे एक ठन गाँव हवे झरिया, मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करें कि ये बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए, हम झरिया चल दे पढ़े भर जान, 1.5-2 किलोमीटर दूर गाँव में। और वहाँ जब रास्ता में मैं जाऊँ और जब स्कूल पहुंच जाऊँ तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया, तो महू कर मन साथ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया।
1: सुरजीत जी विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का, घूमत फिरत यहाँ ले होत वहाँ जात, धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में, कंडेल में पढ़े ला स्कूल पहुंचिस, ये पूरा ओखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समवत जात है। और जब वो लड़का बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाई।
0: जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने उमर पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करे, मैं भी सुनो कर मैं सच जाऊं। जब उमर यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका सुअवसर मिले कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग ली और हमारे बड़े नेता हो गए, और ऐसे बड़े नेता हो कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई। ओकर पूछिन कि आखिर यह आंदोलन चलिस कैसे, कैसे करते हो आप, कैसे आदमी मन जुड़ते, तो सब कारण लो बताए जोड़े के तरीका ला बताई, हम आजादी के लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी।
1: हमार देश आजाद हो गए ओकर बाद सुरजीत जी, और आप मन नान्हे लड़का पढ़त पढ़त पढ़त अब और आगु बढ़िस जब, तो ये पूरा उखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रहिस है, अब उला कहीं ना कहीं तो उतारना रहिस
0: जी,
1: और सबले अच्छे माध्यम रहिस साहित्य
0: जी,
1: तो ओमे आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन।
0: मैं जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी, काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही, झरिया में 4th तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से, तो बोले पढ़े पर धमतरी भेजी, और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे छत्तीसगढ़ी में थोड़ थोड़ सीख गए हो, बोलो स्कूल भी जाओ स्कूल में बोलो बातचीत करो, और प्राय लगभग लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ने वाला जतका रहते मन। एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे, काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओ में आ जाए, तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो, तो मोर कर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन, तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हो हाँ खा बात हो ना तुम मल्ला का कहना है, तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सुधरत गिस। अब मन मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं यहाँ कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम होए नाचा गम्मत होए, ऊ में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता मन आए ऊ मन छत्तीसगढ़ की मांग करे, मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करे से जिला में गांधी चौक में बैठ के सामने बैठ कर बच्चा रहो तो सुनियो अपने मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते ऐसे लिखे जा सकते।
1: ओ बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आप मन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ।
0: यानी बोला सुरता आते कई छोट छोट कविता लिखो, काबर के जो जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहां काट कर, तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला तहू तो छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ तय बोल जय छत्तीसगढ़ जय बोल।
1: कहा बात है कहा।
0: ऐसे जब मैं पर लिख दियो एक ठन कार्यक्रम में हमार स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण वासन दी भाषण नहीं मैं छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जाही ते लगना ऐसे जब मैं सुनियो तो मैं क्यों ऐसा तो मऊ लिख सकता हूँ थोड़ बहुत मैं हिंदी में भी लिखियो छत्तीसगढ़ी में लिखियो। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राजीव गया एक गांव एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गया है तो वहां जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मऊ छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकतो का बोल सक ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हसीस ठाकर लगा तो मैं कुछ जानत नहीं रहो सब छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रहो तो मेरा लौट आती पर मोर मन मरी से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगाते उससे मऊ गाँव धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी
1: नारायण लाल जी
0: परमार जी से जब इकर मन से हुई तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर इस एक जने शिक्षक इस तब वो मुलाकात हुई तो गर्व से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं यहाँ तो मुकिम साहब बोला गा के बताए परमार जी बोल के बताए हमारे एक गुरुदेव शिव प्रसाद जी पांडे हमला आठवीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ाए मगर हिंदी पढ़ाते पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले और मैं छत्तीसगढ़ी बोले तो बोला ऐसे लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे बोला ऐसे लगे तो बोला कि मैं मीठ मानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ ऐसे मन में मोर विचार है बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू कर ऐसे
1: एक आठ कविता लिखा है जिन वो बखत के रहा है कुछ
0: हाँ वो समय जो कविता एक ठन लिखे रहो चलो बता दो मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहो जन बादल गरजत है भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे कार गाँव में रहे तो क्या करते बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे चेत लगा के खेत जोतबो अब पानी के दिन आगे ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रही रही के मुझपाही बादल है वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे खेत बताबो बीजा बोवो खेत बताबो और बीजा बोवो नागर बैला ला धोबो नागर बैला ला फिर धोबो मेहनत के आगे दुनिया झुकते मेहनत के आगे दुनिया झुकते आलसी मन जिंदगी भर रुकते जुन्ना धान नंदागे भैया बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया
1: किसाने के दिन आगे क्या बात है। एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है में इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस चालू होइस तो ये लेखन कार्य और आगू कैसे बढ़िस बोला बताते हो।
0: मैं अब फिर कहा हुईस कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते तो ये मन अपन कवि स्वर में मोला ले जाना शुरू करे और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो हिंदी कविता पढ़ो और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो तो छत्तीसगढ़ी कविता

0: ये सब मंच में आ चुका है। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल भी मंच में आ चुका है। अपने ऊपर लिखियो सियान होगे, तुम्हें भी एक सर बात लिखियो, का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, नवा जमाना के लयिका मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, करिया केस जल्दी सुफेद होगे, करिया केस जल्दी सुफेद होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, चढ़ गए आखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस वो हा हम जवान हो गए, हम जवान हो गए, दो चार दिन के हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आयस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, दो चार दिन के ये हम मेहमान हो गए।
1: क्या बात है, इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गुड़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते। आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते, जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते, और बहुत चीज गुणत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए?
0: एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जात, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े। काबर कि ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी। काबर कि अभी जो परिवर्तन होते, टीवी देखा था मैं कई प्रकार घटना ला देखथन, हम अखबार पढ़थन कई ठन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए, पूर्णता ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी कविता लेख निबंध रिपोर्टाज लिख सकता हूँ, तब लिखना चाहिए। काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते। लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वो भाषा ऐसे हो जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए। अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो, काबर की तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाए। तब अगर गांव वालों मन पढ़ी तो गांव वालों मन लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमार दिल के बात करे, हम पढ़त हन, हमला पढ़े में अच्छा लगत, बोला कठिन नहीं लगना चाहिए। अखबार मन के भाषा जो हवे जोन अखबार में छपत है कहानी कविता लेख निबंध, और जोन गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़ते है वो मन भाषा घलो सिखाते। अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ी में बोलते। हाँ एक बात है, हम कोई चीज ला ग्रहण करे पर इनकार नहीं करन, कारण हम बाजार जाते हैं तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देशापन पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं, मगर अपन भाषा अपन भाषा है, और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।
1: सुरजीत जी, इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते, जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर बर ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता आऊ हमर संगवारी मन ला सुना देते हो, तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती समर कार्यक्रम में।
0: एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अभी एक तरीका कैसे पहुँचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुँचे, का समझ को पहुँचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे हो वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो।
1: स्वागत।
0: दिया चारों खुट अंजोर

0: थे दिया हा, ये बहुत सरल हमार बात कही देते अंधेरा हट गया जी दिया जला दे, मगर अगर पीछे कारण रख में बता तो दिया चारों खुट अंजोर को अगर आते दिया के बाती अस जल के देख।
1: क्या बात है,
0: दिया के बाती असर जल के देख, अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख। अरे जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हो, जोर बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करते, तब मैं कहो जिंदगी में कतेक रिकिम रिकिम के सुख दुख हवे, चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख।
1: क्या बात, क्या बात,
0: चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख, अरे फोकट में सेखी झन मार, फोकट में सेखी झन मार, तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख।
1: क्या बात, क्या बात,
0: घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख, और गरीबी गरीबी केहले का होही,
1: का होही
0: गरीबी केहले का होही, समय के संग ते खुदला बदल के देख।
1: क्या बात,
0: समय के संग ते खुदला बदल के देख, और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती असन जल के देख,
1: दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन, सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे, ऐसे जैसे दिया बरत है ओखर अंजोर बगरत है। सुरजीत जी चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लड़का हमन ला प्रिय होते, मयारुक लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष हो ही।
0: हाँ।
1: तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश सुनाओ।
0: आजकल जो चलत है बाजार में, मैं दो चार जगह मतलब जाए के मौका लगी, गुरु परंपरा देखियो में है, गुरु शिष्य के परंपरा देखियो, तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से। आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने के जो चलत रही से अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए, तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए। वो बात तो लिखियो में है, माँ के ऊपर एक फिर कविता लिखियो, बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गयो तो लोग भर माँ के ऊपर कविता सुनाते, मैं कभी पिता पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो, तो मैं जो माँ के कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखे हूँ वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत।
0: दाई ते मोला जन्म दे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ, पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ, और मैं सच बताऊँ दाई मैं अब देख लेवे बड़े अफसर बनूँ, और जब बनूँ और जब वापस आऊँ दाई तो तोला पहले प्रणाम करूँ, और एक बात बताऊँ दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो उंगली पकड़ के मैं चला।
1: क्या बात है,
0: तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊँ दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका दे भी, मैं बतात हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ, मैं बतात हूँ मोर दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ, मोला दिन याद आई मोर रात याद आई जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मोला सुखा सुलात रहे, दाई वो दिन मोला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुनाऊँ और मैं तोर पाँव ला दबाऊँ दाई तोर पाँव ला दबाऊँ।
1: क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है, का करना चाहत हो एक साहित्यकार के रूप में आप मन के का संकल्प है?
0: मैं चाहत हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, आठवीं सूची में ओकर नाम आ जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी है छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले परीक्षा होए और ओकर मल्ला वही मन में नौकरी भी मिले, अपन राज हो गए अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रात रात मोर मन में विश्वास भी है, एक दिन ऐसे आई जब आठवीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी ला ले जाही, सरकार मानी, हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई। भले मैं रहूं चाहे मत रहूं, मगर मैं होकर बर दुआ करत।
1: सुरजीत जी जब प्रसन्नता होते, मन प्रफुल्लित होते, तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत चार लाइन और कुछ सुना देते हो।
0: मैं दाई लगे हो दाई, मैं तोर बात ला निभाए हूँ, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ, लड़ाई के मैदान में दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ, जो वचन दे रहे हो अपन बात ला निभाए हूँ। देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, सब मतलब दिखाए हूँ। दाई मोला याद है तोर वचन तोर बात, अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई तोर बात है, बात नो है, वचन है, कोई कोई लड़का बन निभाते वही ला मैं निभाए हूँ।
1: का बात है, का बात है। साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच मा, जेखा नाम है हमार संस्कृति हमार साहित्यकार। हमार शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहा है और हमार ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा अच्छा कविता, अच्छा अच्छा बोली, अच्छा अच्छा भाखा। सुरजीत जी आज आप मन हमार पहुनाई ला स्वीकारो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमार संस्कृति हमार साहित्यकार ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए ये गोठ बात सुनत रहे। एक संग मोर भुइया के ये अंक है सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बजने को हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना। ओम शांति ओम फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिज

0: आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य स्तरीय पुलिस अकादमी में 33 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह

मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नैतिकता, संवेदनशीलता और जनता का विश्वास पुलिस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कानून व्यवस्था के साथ समाज की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुल के निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुकमा जिले में रेत खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से किया जाएगा। शबरी नदी स्थित 4 हेक्टेयर क्षेत्र की खदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया MSTC पोर्टल पर होगी। आवेदन 17 से शुरू होकर 23 जून तक लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 30 बसों की जांच कर दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि अनुपस्थित 45 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: के प्रस्तुत करता है छत्तीसगढ़ संवाद।

रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। 2 जून की रोटी के बाद दूसरी चीजें भी अहम हो जाती हैं। मेहनत से ही इन तीनों को हासिल किया जाता है। पेट में रोटी और तन पे लंगोटी के बाद सिर पर एक छत की जरूरत होती है। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर कहीं पूरा होता है अपने घर का सपना। इस कल्पना को साकार करने के लिए अब सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उन्हीं में से एक है स्मार्ट रजिस्ट्री।

0: छत्तीसगढ़ में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम से समय की बचत भी होती है और ये जन सुविधाओं का भी पूरा पूरा ध्यान रखने में सहायक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी यानी पंजीयन शुल्क में 50% की विशेष छूट दी जाती है। इस स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली की और भी कई विशेषताएं हैं। आप हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।
1: पहले घपला उपला होतरी से काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारतरी रजिस्ट्री भी हो जाती। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमर पंजन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगे, रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगी। एक भी व्यवस्था हमन करे हैं।

0: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने ये माना है कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं देने में छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम बेहद प्रभावी है। अब राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की पहल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा बन रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है,
1: नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का, और इसके तहत 10 सभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा।

0: देश का पहला आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय 4 से 6 घंटे होता था, जो अब घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। और ये संभव हुआ है आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से। नए स्मार्ट कार्यालयों में आरामदायक लाउंज, एसी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, हेल्प डेस्क और स्वच्छ डिजिटल वातावरण की सुविधाएं हैं। यहां टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले के कारण बिना किसी परेशानी के तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से काम होता है। इस सिस्टम में ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और रजिस्ट्री के बाद सीधे मोबाइल पर अपडेट और खसरे में ऑटोमेटेशन की सुविधा है।
1: मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं उपपंजीयक कार्यालय नवा रायपुर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ। यह कार्यालय स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। इस कार्यालय में लोगों के लिए पंजीयन की तीव्र एवं पारदर्शी सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ लोग सामान्य कार्यालय में जहाँ वेटिंग हॉल और शौचालय अन्य सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों के लिए इंतजार करने के लिए वेटिंग हॉल रहते हैं, अलग से फीमेल मेल टॉयलेट अलग अलग उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है, जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का NGDRS के द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारे इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर के अतिरिक्त रायपुर के विविलन टावर में, सड्डू में, अभनपुर, हिल्दा और रायगढ़ जिला में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही और भी नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का बनाया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट पंजीयन से क्योंकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, इसलिए यह पूर्णतः पारदर्शी है और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होता है और EKYC के माध्यम से पक्षकारों की जांच होती है। साथ ही त्वरित तुरंत नामांतरण हो जाता है। जैसे ही पक्षकार क्रय विक्रय के दस्तावेज का प्रस्तुत करते हैं, पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वैसे ही वह नामांतरण उस दस्तावेज का नामांतरण भी हो जाता है, पक्षकार के नाम से वह संपत्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया जो है बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और साथ ही पक्षकारों को उनके संपत्ति में नाम भी है उसका 10 दिन आ जाते हैं, तो की संभावना तो लगभग नगण्य है, क्योंकि जो दस्तावेज जो भी चीजें हैं पहले पक्षकार के नाम से रहेगी, उन पक्षकार वो ऑनलाइन में पहले सत्यापन होता है कि उनके नाम से है जमीन या नहीं है, और उनके नाम से जमीन है वही जमीन को वह बेच पाता है। और जैसे ही पंजीयन होता है तो विक्रय होने के पश्चात में वह जमीन दूसरे पक्षकार क्रेता के नाम पर नामांतरण हो जाता है, तो तुरंत ही, तो उससे संभावना तो लगभग नगण्य है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, खासकर रायपुर में अभनपुर, तिल्दा, नवा रायपुर, बेबीलोन टावर और सड्डू में है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ हो चुका है।

0: छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक अनुकूल वातावरण अत्यंत सराहनीय है। स्मार्ट रजिस्ट्री की सुविधाओं के कारण नागरिक खुश हैं। जटिल प्रक्रियाएं अब आसान जो हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब यदि कोई चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली अब हर नागरिक की साथी बन गई है।
1: मैं प्रवीण शुक्ला बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मैंने 3 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट के अंदर ही नामांतरण हो गया। जिस प्रक्रिया में 5-6 महीना लग जाता था, समय, ऊर्जा और पैसा भी लगता था, वो मात्र 10 मिनट में हो गई। मैं इससे अचंभित हूँ और सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। ये एक नई क्रांति है। आई एम हैप्पी कस्टमर ऑफ विष्णुदेव सरकार। और मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर से मिलता है, कंज्यूमर को फायदा ही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

0: स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी तर्ज पर प्रदेश भर में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बन गया है नेशनल रोल मॉडल। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का सपना पूरा होते ही रजिस्ट्री के अनुभवों में एक बड़ी क्रांति आई है। जमीन के क्रय विक्रय की जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है। इस बारे में भारती शर्मा बताती हैं।
1: सबसे पहले जरूर भुइया में जाकर, ऑनलाइन भुइया में जाकर उनकी वेबसाइट रेवेन्यू CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहाँ पे मतलब प्रोफार्मा में, एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष, संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से और निर्धारित शुल्क ₹100 जमा कर प्रति वर्ष ₹100 जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं। भुइया पोर्टल में जाकर ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC इन, उस पर जाकर ऑनलाइन खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान में कौन है उसका स्वामी ये पता चल जाएगा। भुइया पोर्टल ये बहुत उपयोगी चीज है। ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवेन्यू CGNIC वाला, तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा ये वेबसाइट पर जाके यदि देखेंगे ना, सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है, जिससे ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं, इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि

जो नंबर डालेंगे वो भैया से उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है। यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशेष प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है, उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें, ये है। जैसे तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा, जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा। सबसे जरूरी बात ये कि सबसे पहले B1 यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें, और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में, लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पट रहा है कि नहीं। और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, तो यह मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से। और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते हो उपपंजक कार्यालय से कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है। जब भी जमीन खरीदे तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जाँच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।

0: नवा रायपुर में स्थापित आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को द्रुतगामी, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नागरिक अनुकूल माहौल में रजिस्ट्री की राह सुगम हो गई है। नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों का सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नमस्ते, मैं अंजलि तिवारी, उप पंजीयक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सद्दू रायपुर। स्मार्ट पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा NGDRS की साइट में जाकर संपत्ति और पक्षकार का पूर्ण जानकारी भरा जाता है। वह अपने सुविधा अनुसार समय स्लॉट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पक्षकार अपने टाइम स्लॉट में उपस्थित होते हैं, जहां उनका फोटो, EKYC और साइन लिया जाता है। 15 से 20 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और सुबह में आपके माध्यम से संपत्ति का एग्जैक्ट लोकेशन फोटो के साथ लिया जाता है। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में AC की सुविधा, वेटिंग लाउंज, शुद्ध पेयजल, फ्री वाईफाई, हेल्प डेस्क तथा प्री प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट पंजीयन प्रक्रिया में पेपरलेस और डिजिटल है। यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है, कैशलेस पेमेंट होता है, डिजिलॉकर की सुविधा दी जाती है। स्मार्ट पंजीयन में B1, खंड 1, नक्शा, पक्षकार की ID की जरूरत पड़ती है तथा सुगम ऐप के माध्यम से लोकेशन की फोटो अपलोड की जाती है। उसके उपरांत 15 से 20 मिनट के अंदर उपस्थिति के पश्चात प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्मार्ट पंजीयन में ई के वाई सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। EKYC के माध्यम से जो फर्जीवाड़े हो जाते थे, जिसमें किसी और पार्टी द्वारा उपस्थित होके गलत फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जाती थी, वो बच जाता है, क्योंकि AKYC से उनकी पहचान कर ली जाती है। सुगम ऐप के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन

पक्षकारों को पता चल जाता है। तो ये सब सुविधाएं उनसे मिली है, साथ में समय की बचत होती है। पहले कम से 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते थे, अब सेम डे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक दिन में अपने पास 50 से 60 रजिस्ट्री कर सकते हैं। रायपुर में अभी सड्डू ऑफिस है जो श्रीराम बिजनेस पार्क में है, नया रायपुर में है सीबीडी में, और तिलदा नेवरा में एक ऑफिस है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10 रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन बनाया गया है, और साल भर में पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जीवाड़ा नया KYC इंट्रोड्यूस किया गया, KYC पहले नहीं होता था, और डिजी लॉकर की सुविधा देते हैं जिसमें दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाता है डिजी लॉकर में।

0: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से कल्याणकारी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ और भी सशक्त बन गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता तो आई ही है, साथ साथ उनका सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने सुशासन की एक नई पहचान को स्थापित किया है।
1: पहले हमें रजिस्ट्री के बाद पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर नामांतरण की प्रक्रिया होती थी। अब क्या हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है। यहाँ रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण हो जाता है और नामांतरण के बाद B1 में दिखाने लगता है। आपका जो नाम रहेगा वो B1 में तुरंत चढ़ जाता है।

प्रदेश वासियों के लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की है। नागरिक केंद्रित इन सुधारों ने भविष्य की तस्वीर में खुशहाली के रंग भर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम के तहत पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सेवा वितरण सुधारों तक की लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की जमीन तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होगी उज्जवल भविष्य की शानदार इमारत। नागरिक सुविधाओं में इजाफा करना ही छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा है। यही वजह है कि लोकतंत्र में आस्था की पताका थामे शासन, प्रशासन और नागरिक एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगीत। संचालन मुकेश चतुर्वेदी का है और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रवि आनंद।

0: अरपा पैरी के धार कर्मा ददरिया सुवा के तान छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत हवे हमर माटी के मान FM 100.7 MHz मा आकाशवाणी रायगढ़ की शानदार प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी लोकगीत की फरमाइशी कार्यक्रम हल्लो संगी संगी हो स्वागत हवे आप मन के हमारे ये फरमाइशी कार्यक्रम मा। तो शुरू करन आज की ये फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हल्लो संगी ला। मैं हूँ आप मन के रेडियो संगी मुकेश चतुर्वेदी और आप मन लेवा मोर जय जोहार। तो संगी वो शुरू हो गए आज के लोकगीत और संगीत के सुहाना सफर और बाज गई ये फोन की घंटी ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो
1: हेलो
0: संगी बताओ संगवारी हो स्वागत हवे हमारी हेलो संगी कार्यक्रम में। आप कहाँ ले बोला?
1: जय श्री राम संगी। जय श्री राम। छाल नवा पारा देवराम बरेट बोला तो।
0: छाल नवा पारा ले देवराम बरेट।
1: हाँ सर।
0: और कहा हाल चाल है बरेट जी?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मस्त काम चला है। मस्त बोटा करा था।
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: हाँ हाँ। तो बरेट जी आज का गीत सुनना चाहता था आपके का फरमाइश है हमारे ये कार्यक्रम में?
1: लहर मारे लहर बुंदिया।
0: लहर मारे
1: आवाज में।
0: अच्छा तो और बाकी सब हाल चाल बढ़िया? तो
1: एकदम मस्त बढ़िया। मस्त काम करा था। मस्त काम है दुकान में। बढ़िया काम करा था।
0: चलो बरेट जी सुना जाए आपके फरमाइश के लहर मारे लहर बुंदिया है ना। आप फोन करा कर सकती। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो
1: जयराम भैया।
0: जयराम स्वागत है संगवारी, हमारे ये कार्यक्रम हेलो संगी माँ।
1: धन्यवाद भैया। कन्या वाला घाट मध्य प्रदेश से ध्रुव राम साहू बोला था।
0: ध्रुव राम साहू?
1: हाँ भैया।
0: कहाँ ले बोले हैं आप?
1: कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश।
0: बहुत बढ़िया साहू जी, आओ बताओ क्या हाल चाल।
1: हाल चाल बढ़िया भैया, खेती किसानी काम चला थे, गोबर कचरा सब खेत में ले जा के।
0: हाँ।
1: और खेत के सब हुई काटी, काटा कुटी सब भी नहीं चले भैया।
0: बहुत बढ़िया, माने खरीफ की तैयारी चला थे कहा जोरदार।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थरा की तैयारी है मतलब अभी।
0: हाँ हाँ
1: सब तैयारी करके।
0: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ।
0: तो ध्रुवाराम भाई मुख्य रूप ले आप मन का फसल लगा था?
1: मुख्य रूप से धान खेती होते भैया, क्या है जन हमारे क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़ से लगे
0: है,
1: वो भी 2-3 किलोमीटर के एरिया से लगे है छत्तीसगढ़ हमारे।
0: अच्छा बॉर्डर में ही है आप? हाँ
1: बॉर्डर में भैया, बॉर्डर में।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: हमारे 3 किलोमीटर जा बोला था राजनांदगांव जिला पड़ते है।
0: अच्छा। चला बहुत अच्छा बात है। तो साहू जी आज के कार्यक्रम में क्या गीत सुनना चाहा था आपके, क्या फरमाइश है?
1: आज कार्यक्रम अभी अलका चंद्राकर जी, मेरी कोई भी गीत सुना देते हो।
0: अच्छा
1: हाँ
0: चलो ठीक है, अलका चंद्राकर जी के
1: मित्र के नाम ले सकते हो भैया मैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ मुन्नालाल पटली जी है, जागेश्वर देवांगन जी है, सुरित रमेश साहू जी है, पवन कुमार सिंह जी और अखिलेश यादव जी है।
0: बहुत सुंदर साहू जी, आप फोन करा कर सी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सुना जाए आपके फरमाइश के ये गीत।
1: धन्यवाद भैया।
0: धन्यवाद।

0: हेलो संगी, आपके नाम का है एक बार बताओ।
1: दुर्गा चौहान सर।
0: दुर्गा चौहान, आओ, आपके गांव कौन सा है?
1: ये ग्राम भाटा, जिला शक्ति में पड़े।
0: भाटा शक्ति है ना?
1: हाँ।
0: तो चौहान जी बताओ, आप हमारा आकाशवाणी के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हो आप?
1: हाँ रोज।
0: का कार्यक्रम सुनत हो बताओ एक बार।
1: लीजिए फिर सुनिए और युवाणी।
0: अच्छा, तो बढ़िया लागते है हमारा कार्यक्रम?
1: हाँ अच्छा लगता, अभी तो यूट्यूब में भी है।
0: अच्छा हाँ, यूट्यूब में भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी है ना,
1: इंस्टाग्राम में
0: सभी चीज में है। और वास्तव में आप जद की भी हमारा श्रोता संगी संगवारी है, आप मन के मैया दुलार बने रहे, हमारे यही अपेक्षा है। तो
1: हमें
0: हाँ
1: भी और, मैं गाता भी और ब्लाइंड पर्सन।
0: अच्छा, आप गाना भी गाता हो, कलाकार हो आप?
1: हाँ जी।
0: तो एक आध लाइन आप पहले सुना दो, और बाद हम आपके फरमाइश पूरा करो। अब वाह का बात है। और दुर्गा चौहान जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमला फोन करा और सुना आपके फरमाइश के ये हमारे लोग।
1: हाँ, ये यूट्यूब में भी तो आते ना आकाशवाणी रायगढ़।
0: हाँ, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में है, सोशल मीडिया में,

जबकि भी इंस्टाग्राम वगैरह है सब में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सब जगह है ना। तो देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नया दुलार बना के रखिए चौहान जी। आप फोन करा एक सीती, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: विक्रमा यह सुना दो पवन चंद्रा करके।
1: पवन चंद्रा करके?
0: हाँ, कोई भी गाना।
1: कोई सा भी गाना ना? चलो ठीक है, आपके पसंद के गीत हम आप मन फोन करा कर सीती, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप सुना था ना आपके पसंद के ये गीत। धन्यवाद साहू जी,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जयराम भैया।
0: जयराम कार्यक्रम हावे। हेलो संगी।
1: जयराम भैया के हैं।
0: जयराम जयराम बताओ संगवारी, आप अपन नाम बताओ, गांव के नाम बताओ।
1: मैं बलदाऊ साहू बोला था, टेलर दुभा से कवर्धा।
0: बलदाऊ साहू
1: दुभा से।

0: आओ, का हाल चाल है बलदाव साहू जी? मैं मुकेश चतुर्वेदी बोलत हूँ।
1: हाँ भैया, एक बार तो बात हो रही तो संग रहे।
0: हाँ ठीक जी। हाँ, एक बार आप मन से हमर फिर बात हो रही से, तो बताओ साहू जी, आओ का हाल चाल है? काका बूता काम चलत है?
1: खेत खार के साफ सफाई चलत है भैया, तैयारी चलत है, धान पान के डालबो तेखा पर। हाँ, पानी गिरीस कल थोड़ा।
0: अच्छा,
1: पानी गिरीस कल यूर थोड़ा।
0: हाँ, अब तो मानसून के माने शुरुआत होगी से कहा, कहीं कहीं बारिश शुरू होगी से, है ना? अब यह दिन है तो बारिश करी ही।
1: हवा ज्यादा चलत रही से कल शाम के 5-1 बजे।
0: हाँ हाँ,
1: 5-1 बजे हवा ज्यादा चलत रही से, पानी थोड़ा गिरीस है।
0: अच्छा, तो साहू जी आज का गीत सुनना चाहता था हमारे ये हेलो संगी कार्यक्रम में, का भरमाई से?
1: जाबो उतर के बाजार, किसम किसम के खाबो मिठाई, और ले लेबो कुशियार, यही गाना सुना दो भैया।
0: ए चेती वो चेती, आप सुनाओ आपके पसंद के फरमाइश करे हो कर सेती माँ ये झमाझम लोक गीत। ठीक है साहू जी?
1: थैंक यू भैया।
0: आप फोन करे कर सेती, आपके बहुत बहुत धन्यवाद
1: भैया। ओके।

ता संगी हो यही गीत के संगे संग हलो संगी कार्यक्रम हर सिरावत है और आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से कौशलेंद्र साय पैकरा जी के, प्रस्तुति सहयोग रही से राम विलास पटेल जी के और ये कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रही ही रवि आनंद जी। तो देवा विदा आप सब झनला हमार राम राम जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो संगी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। 11 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श

0: से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सख्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। छात्रों को आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। विद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों को उनके यहाँ की आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं की गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश देंगे। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लक्षण भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले के 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत का कार्य करेंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत 15 जून से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के संवेदनशील गांव में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के

0: सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76,582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था, अनजान ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं, फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नज़ारे उतर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाए। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

यहीं पर है। सुनी बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफ़र कारवां के हम सफ़र साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं और मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, SMS पर नहीं, WhatsApp पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहां चल रही है वहां पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपने पन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आरडी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं। ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी यार, 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वहीं है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि

इंसान, पशु, पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाज़त चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफ़र में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती मां रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म

0: लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसे जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को डोज जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

0: आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला

0: और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुनील धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं
2: जी,
1: उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को

0: शक तो बनाते हैं हमारे हाँ, श्रोता बता सकते हैं हमारी
1: ये किस तरह से अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती है और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती है, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे दूर के ढोल सुहावने।
0: ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरीके चीज को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की
1: अक्सर
0: रखा
1: है
0: घरेलू बजट, बापरे
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को

0: उजागर करना।
1: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
0: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
0: खुशी होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
1: हम पूरी कर लेंगे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
1: बिल्कुल,
0: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके ऊपर,
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वह कौवा।
0: बिल्कुल।
1: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता, वो अपनी उड़ान के ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं
1: बिगाड़ा, नहीं हटा वो किसी को देखे, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल। वो हार मान के अपने आप ही हट जाए,
0: ये होना चाहिए, और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना। तो जीवन में हर नई चुनौतियों

0: हर नई संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती हैं। और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
0: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए। क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें,
0: अपनी सफाई देना।
1: हाँ, उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर संयत होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी,
0: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्व से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: है ना। एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो ये चीज सही है ना, देखो ये चीज सही है ना। कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आप से निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात, अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ, मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब
1: उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए,
1: और इसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही,
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है। लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल,
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
0: क्योंकि चाटुकारिता में आता है, और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है, इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल होती है, और मजबूत मन ही वो जादू है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आती ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती आज तारीफ नहीं की।
1: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती
0: हूँ। तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें। जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों

0: नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है, इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से कह

0: तो दूर के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा
1: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गाँव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोल ही सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर चमकता है,
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी कुरूपता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी

0: तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्मपत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो बार उसको उनको पढ़ लिया। हाँ। उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कहा अरे मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब? तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखिए, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, वो
1: समथिंग।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होकर टीवी लगाऊँ, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना इंजॉय नहीं कर दिया अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं, देखिए लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार

0: चुके हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
1: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है। साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: हेमंत कुमार साहब की
0: हेमंत कुमार साहब की आवाज़ वो बहुत अच्छा था।

0: वेदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं,

0: उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उनके साथ में वो भी, राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे। अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसे बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी। और वाकई में मैंने देखा राजी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीज़ों ऐसे कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत, तो गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया? कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती
1: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की

0: तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड. और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया. वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है. हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया. मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं.
1: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान. इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा. सुनिए आगे की बातचीत.
2: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के. जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था. वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे. तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन. कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफ़ा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे. सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा. जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी. तो वो उसके इतने मुश्किल से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में. और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं. कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं.
2: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोको.
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी. मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके.
2: मनोज कुमार साहब का नाम आया था. मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है. आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम. वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर.
2: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम.
2: जी जी.
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो. तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो. तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे. तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है. तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं. तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में. तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो. तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे.
2: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को.

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया हो और आपको मजा आया हुआ वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो?
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फ़ंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है? ये नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो ज़बान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो। मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें वो उस वक्त

0: प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल. इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस करिए, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है. वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ. तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे, तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए. अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके. बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे. मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें. वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई.
1: वही गाना सुनते रहे.
0: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है.

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग ख़त्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो भी

0: तो मुझे पूछने गया, वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मज़े की तो बात यह है, मैंने कहा कहने क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज़ हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वैदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई

0: माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी।
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

विविध भारती कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये दरहोरा, सेमई, करंजवार, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखान, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, पटकुरा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 100 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे झलकी और प्रहसन का कार्यक्रम। युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:30 पर। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है योग से रहें स्वस्थ और निरोग। इसके साथ ही आप सुनेंगे क्रम करियर एडवाइस। चर्चा के अंतर्गत आज सुनिएगा अस्तित्व का हाथ बढ़ाएं, जीव जंतुओं संग दुनिया सजाएं। और

0: मादक पदार्थों के सेवन का दुष्प्रभाव। फिल्म संगीत का वक्त होगा शाम 6:20 और शाम 7:00 का। किसान भाई कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे शाम 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कृषक अपनी कंपनी स्वयं बनाए FPO से। आज की नसीहत में सुनिएगा बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार। इसके साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:20 पर। फिल्म संगीत का वक्त होगा रात 8:30 का। रात्रि 9:25 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आतंकवाद थीम पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। डीजी अब सुनिए झलकी और प्रहसन के ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका चांद की किरण।
1: अजी सुनती हो? कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं।
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो मैं आवाज देता हूँ।
1: सरला, ओ सरला।
4: कौन है?
1: मैं हूँ, किवाड़ खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया।
2: नहीं नहीं अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ मुन्ने को सुला रही थी।
2: अच्छा छोड़ो, देखो तो ये देखो कौन है।
3: नमस्ते भाभी जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: भाई वाह, अजी नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय
5: परिचय करवाओ तो।
2: तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
3: पर भाभी जी इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था।
5: अच्छा? वो क्यों?
2: क्योंकि मैं क्योंकि व्योंकि छोट है क्या फिर झगड़ेगा?
3: नहीं।
2: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
5: अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए अंदर आइए।
2: चल भाई अंदर चलो।
5: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
2: कहाँ जा रही हो?
5: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊं।
3: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
5: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है।

0: और फिर आपको तो मुंह दिखाई भी देनी है ना।
1: मुंह दिखाई? अच्छा अच्छा समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंगकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुंह दिखाई देनी है।
2: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
0: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
2: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज कैसा यार भाई, मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ। गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ क्या ठाट है?
2: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता, तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
1: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है, मिस मित्रा,
2: उसी से मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था?
1: ओफो, रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
2: अच्छा सुना
1: है? अरे भले मानस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है।
2: हाँ, हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
1: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास। हाँ। और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
2: अच्छा खैर छोड़। अरे सर चाय ले आई?
0: हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
2: अच्छा लो, ये लो।
0: हाँ लीजिए चाय लीजिए।
1: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुघर गृहिणी हैं।
0: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनकी दृष्टि में तो मैं बैड हाउसवाइफ हूँ।
1: क्यों बे कृष्ण, क्या ये बात ठीक है?
2: ना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा ले, लेके खा।
1: अरे नहीं, और लेना है? अमा बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
2: जाएगा? हाँ। अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
1: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
2: परसों?
1: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।
0: क्या है?
1: परसों लोक नृत्य का शो है ना। हाँ, उसके 2 टिकट हैं।
2: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
0: हाँ भाई साहब ये ठीक ही कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, 4 टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे 2 टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला, ये टिकट ले लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ।
1: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
2: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला रुपए ले आओ।
0: जी अच्छा।
1: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
2: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था,
1: पर क्या?
2: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
1: रहने दे, तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार।
0: इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए।
1: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
0: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
1: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण,
2: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
1: नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है।
2: तो वहीं से ही चल।
1: ओह अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधम। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बना। सुनो,
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाओ।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।
1: ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पलेंगे कैसे?
0: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
1: अच्छा भाई चलो, मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
0: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग।
0: नहीं नहीं, सुनते हो?
1: ओफो, क्या है?
0: मुझे नींद नहीं आएगी।
1: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
0: चिंता हो रही है।
1: कैसी चिंता?
0: गीता और महेश की फीसें देनी है।
1: तो दे देना।
0: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
1: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
0: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं। भला क्या जरूरत थी टिकटों की? उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
1: क्यों चिंता करती हूँ सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
0: ओफो, तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों?
1: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है, और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता?
0: हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं।
1: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
0: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ।
1: वो कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी फूहड़ है इसीलिए ना।
0: हाँ हाँ, मैं ही फूहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया।
1: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब क्या है, बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो।
3: अरे प्रेम, आओ आओ आओ भाई आओ। है
1: क्या, उसी से मिलने आए हो?
4: हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया यार, मन आनंदित हो गया।
1: हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
4: अबे तो जलता क्यों है, उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
1: क्या कहा?
4: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई,
4: हाँ
1: शाम का क्या प्रोग्राम है?
4: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
1: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, क्यों ठीक है ना?
4: हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
1: तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके
4: ओके ओके, ठीक 6:45।
1: हाँ भाई। अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
2: ओफो, देर ना हो जाए कहीं।
1: रामू ये क्या है?
5: जी चाय।
1: अच्छा चाय को बाहर रख दो, और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
5: जी हाँ,
1: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला,
2: अरे ओ सरला,
1: ओफो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
0: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा, तैयार होना ही नहीं है, क्या कह रही हो तुम ये?
0: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़
1: दो। मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
0: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ।
0: तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
1: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? ओफो, गीता संभाल लेगी ना उसे। अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे।
0: आकर देख जाएंगे? फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
1: क्या कहा? फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी। 20 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है। अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
0: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। अनपढ़ जाहिल कुमार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है? शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना।
1: हाँ हाँ, ठीक ही बात है। तब तुम कुछ और ही थी। तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब?
0: हाँ, अब क्या हो गया है?
1: अब क्या नहीं हुआ है? अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है। तुम ही बोलो, प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुनाओ मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नरक में।
5: आओ आओ कृष्ण, हमें देर हो गई।
1: हाँ देर हो गई।
5: हाँ भाभी जी कहाँ हैं? क्या गाड़ी में बैठी हैं?
1: नहीं गाड़ी में नहीं, हाँ घर में बैठी हैं।
5: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अबे बात तो बता।
1: बात बात कुछ नहीं भाई। हाँ मुन्ने को बुखार था, बस सरला नहीं आ सकी।
5: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजी सुनती हो?
6: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
1: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
6: हैं? भाई साहब तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। मैं बाप प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
5: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
6: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
1: नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
5: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
6: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
1: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
5: दिमाग तो खराब होगा ही, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियां, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
1: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
6: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
5: हाँ दोस्त ये ठीक कह रही हैं, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
1: कहता तो ठीक है, हाँ। वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था,
5: और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल भाभी जी के पास चले।
1: नहीं नहीं चलो, हाँ। तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, अपनी सरला के पास।
5: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

अभी आप सुन रहे थे नाटिका, शीर्षक था चांद की किरण, निर्देशक जनार्दन राय, लेखक थे प्रेमलता जैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र पर तैयार किया गया। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है योग से रहें स्वस्थ और निरोग। इसके साथ ही आप सुनेंगे करियर एडवाइस और चर्चा। चर्चा के अंतर्गत आज सुनिएगा अस्तित्व का हाथ बढ़ाए जीव जंतुओं संग दुनिया सजाएं और मादक पदार्थों के सेवन का दुष्प्रभाव। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 6:20 पर और 7:00। किसान भाई कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कृषक अपनी कंपनी स्वयं

0: बनाए FPO से। आज की नसीहत में सुनिएगा बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:20 पर। 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आतंकवाद थीम पर विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 9:25 पर। रात्रि 10 का वक्त होगा कार्यक्रम विविध संगीत का और 10:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रम।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
0: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़, तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी shrotarayagad@gmail.com। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और आज के युवाणी कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी को तनाव है, किसी को नींद नहीं आती, कोई मोटापे से परेशान है, तो कोई छोटी छोटी बीमारियों से। आधुनिक सुविधाओं ने हमारी लाइफ इजी ज़रूर बना दी है, लेकिन इसके साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, जंक फूड का सेवन, अनियमित खान पान और व्यायाम की कमी ने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है, जिससे बॉडी में कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में योग अपना सकते हैं। दोस्तों, योग सिर्फ कुछ आसनों का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। हजारों वर्षों से भारत में योग का अभ्यास किया जाता रहा है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रही है। योग हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ दवाइयाँ पर निर्भर रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही दिनचर्या और नियमित अभ्यास से भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, योग के कई फायदे हैं, जैसे योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है। जो लोग लंबे समय तक बैठकर कार्य करते हैं, उन्हें कमर दर्द, गर्दन दर्द और जोड़ों की समस्या होने लगती है। नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में दर्द नहीं रहता है। बॉडी रिलैक्स फील करती है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बॉडी के सभी पार्ट्स में पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और थकान कम होती है। आज मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार और भविष्य की चिंता के कारण लोग तनाव और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। योग और प्राणायाम मन को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो मन की बेचैनी कम होती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। योग हमें वर्तमान में खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देना सिखाता है, जिससे अनावश्यक चिंताएं कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, योग रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को अनेक रोगों से बचाने में मदद करती है। नियमित योग करने वाले लोग सामान्यतः कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका शरीर संक्रमणों और रोगों से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। इसके अलावा योग पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे भोजन सही तरीके से पचता है और शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिल पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है तो योग उसके लिए भी लाभदायक है। कई योगासन शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायता करते हैं। योग के साथ संतुलित भोजन अपनाने से वजन को नियंत्रित रखना आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि योग किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। बच्चों, युवा, बुजुर्ग सभी अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि योग इतना लाभकारी होने के बावजूद हम इसे अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं अपनाते? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी टाम टोल की आदत। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, जबकि दिन का थोड़ा सा समय भी योग के लिए निकाला जा सकता है। कई कुछ दिनों तक योग करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम ना मिलने पर उसे छोड़ देते हैं, जबकि योग का लाभ धीरे धीरे और स्थायी रूप से दिखाई देता है। इसके लिए धैर्य और नियमितता ज़रूरी होती है। दोस्तों, योग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत कठिन नहीं है। इसकी शुरुआत हम छोटे रूप में भी कर सकते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 10-15 मिनट योग और प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। शुरुआत आसान आसनों से करनी चाहिए और धीरे धीरे समय और योग बदलते रहने चाहिए। दोस्तों, योग के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। इस दिन को मनाने की पहल
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में की गई थी। प्रत्येक वर्ष इस दिवस की थीम होती है। इस वर्ष विश्व योग दिवस 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। दोस्तों, योग स्वस्थ और निरोग जीवन की कुंजी है। ये हमें रोगों से बचाने के साथ साथ जीवन को अधिक संतुलित, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है। अगर हम डेली कुछ समय योग को दें तो अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें बहाने छोड़कर योग अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन से बढ़कर कोई धन नहीं होता। योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की एक सुंदर राह है। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट ना हो, खेतों में तितलियाँ ना उड़ें, जंगलों में जानवर ना हों और नदियों में मछलियाँ ना तैरें। ऐसी दुनिया कितनी सोनी और नीरस लगेगी। प्रकृति की सुंदरता सिर्फ पहाड़ों, नदियों और पेड़ों से नहीं बल्कि जीव जंतुओं से भी है। मनुष्य और जीव जंतु एक ही धरती के निवासी हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही संबंध सह अस्तित्व का आधार है। सह अस्तित्व का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के अधिकारों और अस्तित्व का सम्मान करना। जिस प्रकार हम मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी इस धरती पर जीवन जीने का पूरा अधिकार है। वे भी दर्द महसूस करते हैं, उन्हें भी भोजन, पानी और सुरक्षित वातावरण की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति दया, प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखें। दोस्तों, आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण अनेक जीव जंतु संकट में हैं। उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अगर ये स्थिति जारी रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका प्रभाव अंततः हम मनुष्यों पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें समय रहते सचेत होना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करके जीव जंतुओं के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। जैसे गर्मियों में घर की छत, बालकनी, आंगन या बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी, दाना और खाना रखकर पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे कई जीवों का घर होते हैं। घायल या बीमार पशु दिखाई दे तो उसकी मदद करें या पशु चिकित्सक को सूचना दें। प्लास्टिक और कचरा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है। कई बार पशुओं को प्लास्टिक में खाना देने पर वे प्लास्टिक समेत खाना खा जाते हैं। वे पशु हैं, उनमें ये समझ नहीं है कि क्या खाने से उनके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। पर हम मनुष्यों के लिए ये समझना होगा कि प्लास्टिक पशुओं को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है। कई पालतू जानवर तो रखते हैं पर उनकी देखभाल नहीं रख कर पाते। दोस्तों, कोई बेजुबान अगर आपके भरोसे बैठा है तो आपका कर्तव्य है कि उसकी सही तरीके से देखभाल करें और उन्हें समय पर भोजन व पानी दें। सड़कों पर रहने वाले पशुओं के प्रति दयालु रहें और उन्हें बिना वजह परेशान ना करें। पक्षियों के घोंसले नष्ट ना करें और उनके अंडों या बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। वन्य जीवों का शिकार ना करें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों, जितना हो सके हमें जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जीव जंतु सिर्फ प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मधुमक्खियां परागण करती हैं, पक्षी बीजों का प्रसार करते हैं और अनेक जीव खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। अगर इनमें से कोई कड़ी टूट जाए तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ हम मनुष्यों की नहीं, ये सभी जीवों की साझा धरोहर है। जब हम जीव जंतुओं के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान का व्यवहार करेंगे तभी सच्चे अर्थों में एक सुंदर और संतुलित दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।
दोस्तों आइए हम सभी संकल्प लें कि सह अस्तित्व का हाथ बढ़ाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे और उनके साथ मिलकर इस दुनिया को और अधिक सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों चर्चा में बस इतना ही और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। गीतकार हैं समीर व संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के क्रम करियर एडवाइस में। इस क्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न करियर विकल्पों, उनकी योग्यताओं, अवसरों और संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आप अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं क्रम करियर एडवाइस। दोस्तों आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ कंटेंट राइटिंग एक तेजी से उभरता हुआ करियर बन गया है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है किसी विषय पर सरल, स्पष्ट और रोचक तरीके से लिखना। वेबसाइट, ब्लॉग, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिए अच्छे कंटेंट व क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। अगर किसी को लिखने का शौक़ हो, लिखने में क्रिएटिविटी हो, तो कंटेंट राइटिंग में अपना भविष्य बना सकते हैं। कंटेंट राइटर बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की अनिवार्यता नहीं होती, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन या साहित्य में स्नातक की पढ़ाई फायदेमंद रहती है। सबसे ज़रूरी है भाषा पर अच्छी पकड़, सही व्याकरण और स्पष्ट लेखन शैली। दोस्तों एक अच्छे कंटेंट राइटर में रिसर्च करने की क्षमता, रचनात्मक सोच, समय पर काम पूरा करने की आदत और डिजिटल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। SEO, कीवर्ड रिसर्च और AI टूल्स की बेसिक समझ भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुरुआत में 15,000 से 30,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। अनुभव और विशेषज्ञता बढ़ने के साथ आय में अच्छी बढ़ोतरी होती है। कंटेंट राइटर्स फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में भी बेहतर कमाई कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए लेखन का नियमित अभ्यास करें। समाचार, ब्लॉग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य या वित्त जैसी किसी विषय में विशेषज्ञता विकसित करें। इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट राइटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जुड़े कोर्स भी कर सकते हैं। आपको इस फील्ड में कई अवसर मिल सकते हैं, जैसे न्यूज़ वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों, ई कॉमर्स कंपनियां, मीडिया संस्थानों और स्टार्टअप्स में रोज़गार के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे भी काम किया जा सकता है। दोस्तों कंटेंट राइटिंग उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट करियर विकल्प है जो अपनी लेखन क्षमता को पेशे में बदलना चाहते हैं। डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए कंटेंट राइटर बने और अपना करियर बनाएं। दोस्तों आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज की अगले चर्चा में। दोस्तों आजकल नशा करना आम बात होने लगी है। लोग नशे को फैशन, शौक या तनाव दूर करने का तरीका समझ लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। शुरुआत में नशा करने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन इसका असर शरीर, दिमाग, परिवार और समाज पर बहुत

से फेफड़े कमजोर होते हैं और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नशे की वजह से रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। शराब का अधिक सेवन लीवर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। भूख कम लगना, पेट दर्द, गैस और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है, व्यक्ति जल्दी थक जाता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तंबाकू कैंसर का कारण बनती है। दोस्तों, नशा शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है।

शुरुआत में इसका असर कम दिखाई देता है, लेकिन लगातार सेवन करने पर ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नशे का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। नशे की लत के कारण घर में झगड़े बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग नशे की ज़रूरत पूरी करने के लिए गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं, जो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। मादक पदार्थों का सेवन पढ़ाई और करियर को भी नुकसान पहुंचाता है। छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका ध्यान भटक जाता है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। नौकरी करने वाले लोगों की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। समाज में भी नशे की लत वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं समझा जाता। समाज के लिए नशा एक बड़ी समस्या है। नशे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं, अपराध और हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। इससे समाज की शांति और सुरक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मादक पदार्थों से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमें दूसरों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक ज़रूर करना चाहिए। स्वस्थ शरीर, साफ सोच और खुशहाल जीवन के लिए नशा मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे और समाज के बेहतर भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, चर्चा में बस इतना ही। आइए सुनते हैं फिल्म फिजा का ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब से फिर मिलेंगे युवाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत दोबारा आप सुन सकते हैं 7:00। किसान भाई कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे 7:20 पर। किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कृषक अपनी कंपनी स्वयं बनाए FPO से। आज की नसीहत में सुनिएगा बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे 8:20 पर। 8:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत का। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आतंकवाद थीम पर विशेष कार्यक्रम हम रायपुर आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे 9:25 पर। विविध संगीत सुनिएगा 10:00 और 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों का।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी श्रोता रायगढ़@gmail.com।

आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करीन स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। अब समाचार विस्तार ले। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होए के संगे संग आज ले प्रदेश के जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल मन खुल गए है। आज ले स्कूल मन में शाला प्रवेश उत्सव घलो मनाए जावत है जौन 27 जून तक चलही। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नवा लड़का मन के टीका लगा के स्वागत करेगीस। उन्हें विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल घलो बांटे जावत है। नवा शिक्षा सत्र की शुरुआत ले पहली काली परिवहन विभाग यातायात पुलिस स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय के सामला टीम स्कूल बस मन के जांच करीन। ये दौरान स्कूल बस के सुरक्षा मानक दस्तावेज और कर्मचारी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालक मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। राज्यपाल रमन डे का आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप संघ राखे गए 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के शुभारंभ करें। ये मौका में राज्यपाल कहने की AI आधुनिक युग के एक विशेष तकनीकी हर है जौन चिकित्सा कृषि अर्थव्यवस्था और शिक्षा समेत आने आने क्षेत्र में मानव के सहायक बन सकत है। फिर यह मानव बुद्धि संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य के स्थान नहीं ले सके। ओमन युवा मन ले आह्वान करीन है कि ओमन AI और आने आने तकनीक के उपयोग नवाचार और समाज के हित में काम करे। ये मौका में राज्यपाल

0: एआई कौशल रथ ला हरियर झंडा दिखा के रवाना करीन। ये रथ प्रदेश के आने आने क्षेत्र में जाके विद्यार्थी शिक्षक और आम लोगन मन ला एआई के उपयोगिता संभावना और रोजगार के मौका के जानकारी दी। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय ऊपर चर्चा करे जाही। एकर संगे संग विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी के बारे में घलो लोगन मल्ला जानकारी दे जाही। ग्राम सभा में पाछू बैठका में पारित प्रस्ताव के समीक्षा, पंचायत के आय व्यय के अनुमोदन, आने आने विकास काम के प्रगति और पंचायत संपत्ति के प्रबंधन जैसन विषय में घलो गोट बात करी जाही। संघ लोक सेवा आयोग UPSC हा ए बच्छर के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दे है। आयोग बताइने कि 1000 ले ज्यादा पद मन बर 13000 ले ज्यादा उम्मीदवार मन के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बर चुनाई हो है। UPSC हा उम्मीदवार मन ला यहू बताइने कि उखर नंबर कट ऑफ अंक और उत्तर सूची आखिरी रिजल्ट घोषित होए के बाद आयोग के वेबसाइट में अपलोड करी जाही। उम्मीदवार UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में भारतीय जनता पार्टी डहाले प्रदेश के आने आने जिला में पत्रकार वार्ता आयोजित करी जावत है। इही कड़ी में रायपुर में पत्रकार मल्ले गोट बात करत भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण ला समर्पित रहे है। उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुंगेली में राखे गए पत्रकार वार्ता में कहने कि मोदी सरकार के 12 बच्छर विकास विश्वास और जन कल्याण के ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हरे। उती खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में राखी के पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्छर की उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। ये रोक 15 अगस्त तक रही। ये दौरान नदिया नरवा और तरिया मन में मछली पकड़े में रोक रही। छोटे तरिया और जल स्रोत जिखा संपर्क कोनो भी नदिया नरवा ले नहीं है वहां ये रोक नहीं रहा है। एकर संगे संग बड़े जलाशय में व्यावसायिक रूप ले संचालित करैया केज कल्चर गतिविधि में लगल ये प्रतिबंध ले बाहर रखे गए है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत कोनो भी मनखे या संस्था प्रतिबंध के उल्लंघन करत पाए जाही त उखर मन ऊपर 25,000 रुपया तक के जुर्माना लगाए जाही। अवैया 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में बैठका लीन। ये समीक्षा बैठका में आने आने विभाग के बड़का अधिकारी मन शामिल हुई। अधिकारी मन बताइने कि ये बच्छर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिला में रखे जाही। उन्हें राज्य के हरेक ग्राम पंचायत के प्रमुख जगह मन में योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे के जम्मू जिलाधिकारी मल्ला निर्देश दे गए है। मुख्य सचिव अधिकारी मल्ला कहीन है कि 21 जून के नीट पुनर्परीक्षा रखे गए है एला ध्यान में राखत यह सुनिश्चित करे जाए कि योग दिवस आयोजन के सेती नीट परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी मल्ला कोनो किस्म के असुविधा जन हो। ये बच्छर योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित करेगी है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 गांव में जन चौपाल लगा के गांव वाले मन ले गोट बात करी। ओमन विकास काम और सरकारी योजना मन के जानकारी लेन। ये दौरान आने आने गांव पर लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करी और युवा खिलाड़ी मल्ला क्रिकेट किट घलो दीन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग डहर ले बिजली के

0: दरमा करेगी बढ़ोतरी के प्रदेश कांग्रेस डाहले विरोध करे जावत हे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आज रायपुर में पत्रकार मल्ले गोट बात करत कहीने की बिजली के दाम में करेगी बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापिस ले के कांग्रेस आंदोलन करही। उमन कहीने की काली 17 जून के प्रदेश के सबो जिला के बिजली ऑफिस के घेराव करे जाही। उन्हें 18 जून के कांग्रेस जम्मू जिला में पत्रकार वार्ता करके बिजली के दाम में हुए बढ़ोतरी के विरोध करी। श्री बैजा बताइने कि जुलाई के पहली हफ्ता में कांग्रेस कार्यकर्ता मन है स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर ले आवेदन भरवा के स्मार्ट मीटर हटाए के मांग करी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार है घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल में हरेक यूनिट पाछू 30 ले 50 पैसा और गैर घरेलू बिजली दर में 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जुड़े सबो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मन में स्नातक और स्नातकोत्तर पहली सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरण में होगी। विद्यार्थी मन ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगी। शक्ति जिला में एसीबी बिलासपुर की टीम है रिश्वत लेवा शक्ति जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप बाबू अविनाश ठाकुर और चपरासी लक्षण भानु ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मनु पर 1,00,000 रुपया की रिश्वत लेके आरोप हवे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण काम के चेक जारी करे के एवज में रिश्वत मांगे रहीस। एसीबी है तीनों जन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करी स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी की ये रचना। संगीत आनंद मिलिंद का है। फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका 2 स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी

0: स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे जतिन का गाया गीत, फिल्म था जो जीता वही सिकंदर। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा फिल्म दिल का ये गीत।

फिल्म दिल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायतों के आय व्यय का अनुमोदन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। आज से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है जो 27 जून तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे AI और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। इस मौके पर राज्यपाल ने AI कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को AI की उपयोगिता, संभावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट UG की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित की जाने वाली केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक श्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र

0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड लोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कल 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली के दाम में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का विरोध करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकास शील ने आज मंत्रालय में बैठक ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 21 जून को योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। दुर्ग जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर तथा क्रीड़ांगण समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित जिला क्रीड़ांगण समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में तय प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को छोड़कर बाकी की पूरी भूमि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपी जाएगी। इसके लिए भूमि को 33 वर्ष की अवधि की लीज पर देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विद्यार्थियों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी होगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल सुबह 10 बजे अभनपुर से कुरुत के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने औषधि नियम में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

0: योजना के तहत आज कांकेर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पथ और फुटकर विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण संबंधी आवेदन जमा किए। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
9: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून, दिल की आरती,
5: सुरीली संदली।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

दामिनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

नवा फसल के दिन आगे हो जावा सबो किसान तैयार, छीन पछर के बीजा राखो, लगाइयो करके बीजो उपचार, लइका चले स्कूल डहर होही सबो होशियार, डोली चले किसान सबो भर ही अन्न धन के भंडार। और आज के किसान वाणी सुने जम्मो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। हाँ त किसान और किसान वाणी सुनैया ददहो, समय के घोड़ा तो सरपटात भागत हवे संगी, और भागत भागत आज यही ठौर में हवरे हवे। दिन पर गे मंगलवार, दिनांक हो गए 16 जून 2026, समय हो गए बियारी के बेला, हमर तुम्हार भेंट मुलाकात के बेला, किसानी के किसान वाणी के बैठकी के बेला। त ददहो हिंदी महीना में तो अभी जेठ चलत हवे, फिर हमर कोती मान के चलथन कि मानसून है 15 जून तक खबर जाते। वैसे तो दादा हो भुइया में पानी के छारा पड़ गए, और वो संजीवनी के महक किसान के नाक तक को हबर गए हवे, जोन ला हम माटी के सोंधी महक कथन। जब तपे तपाए धरती माता के अचरा में पानी के पहली बूंद पड़ते, और ओकर जोन महक होते किसान ला एक घा औ नामा जीवन जिए के मौका देते, किसान ला सजग कर देते कि हे भूमिपुत्र उठ, कमर कस, गमछा ला मुनी में बांध, नांगर कोपर झौवा कांपर कांवर ला कस, और चल कूद जा समय के सम्रांगण मा, फिर एक घा अपन कर्म और जांगर के दम मा, फिर एक घा वो अपन के पुरुषार्थ ला दिखा। धरती माता की गर्भ ले सींच के बीज ला पौधा बना, फसल उगा, और दुनिया के अरबों खरबों मनखे की भूख ला मिटा, फिर झन देख लहूट के कि तय का पाए कि का गवाए। बस अपन के कर्म ला और साबित कर दे कि तोला भुइया के भगवान काबर कहे जाते। दादा हो इति बाल नवा फसल शुरू होत हवे स्कूल में, अब आज 16 जून खुल गए स्कूल के द्वार, लेकर चले हमें पाठ पढ़े बर, अपन के जिंदगी ला गढ़े बर, कापी फोल्डिंग सिलेट पुचल बेग सबो पाछू छूट गए। नवा जमाना के नामा पढ़ाई, मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट प्रोजेक्टर, बस खाली टच करके करे के आवश्यकता हवे, फिर सगरो संसार के ज्ञान स्क्रीन में। आवा अपन अपन के कर्म कथाला, अपन अपन के पाठला, अपन अपन के तरीका ले पढ़ी संगवारी हो, फिर थोरकस विराम गोटबाट ला दही, अब इकरा एक ठन संदेश सुनी, फिर अपन के धार में चलबो, अब इकरा लेवा सुना संदेश।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ, ता संदेश अपन के संदेशा देके चल परेश दादा हो। अब चला हमर गुड बात के डहर में डहर यही और दादा हो करी आज के बाद। आज के बाद ये कहते संगवारी हो, कृषक अपनी कंपनी स्वयं बनाए एपीओ से। तो किसान दादा हो, हमार देश है कृषि प्रधान देश अभी। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप ले कृषि में निर्भर रहते। छोटे और सीमांत किसान संख्या में ज़्यादा हमें। ये किसान छोटे होए के कारण अपन ऊपर के उपज के सही मूल्य नहीं मिले पाए है मला। आधुनिक तकनीक के उपयोग नहीं कर पाए। अपन उपज ला सही तरीका गुणवत्तापूर्ण बाजार तक नहीं पहुँचा पाए। इमें कई ठन कठिनाई के सामना करना पड़ते। ये सबो समस्या के समाधान किसान अपन सही उत्पादक मन ला, जोन भी मन ओमन उत्पादन करत हैं, एकर ये उत्पादक सब किसान मन समूह बना के जोन ला हम एपीओ किसान उत्पादक संगठन कथन इला बना के कर सकत हमें। दादा हो, एपीओ किसान मन के द्वारा गठन किए गए एक ठन ऐसने संस्था हवे जोन अपन कंपनी के रूप में घलो पंजीकृत होत हवे। यह किसान मन के हित के रक्षा करते। एमा किसान स्वयं एकर सदस्य होते हैं, शेयर धारक होते हैं। सबो किसान मिलके अपन कंपनी के गठन करते हैं और सामूहिक रूप ले कृषि संबंधित गतिविधि के संचालन करते हैं। दादा हो, एपीओ के माध्यम ले किसान उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक के संग संग कृषि यंत्र घलो ये सबो ला कम कीमत में प्राप्त कर सकत हमें। काबर की सामूहिक खरीद करे में वस्तु मन के मूल्य कम होते। और दूसर कोती किसान अपन के उत्पादक सामूहिक बिक्री के लिए किसान मल्ला बेहतर बाजार और उचित मूल्य प्राप्त होते। एपीओ ले किसान मल्ला भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे सुविधा घलो उपलब्ध कराए जाते। किसान दादा हो, सरकार घलो एपीओ के गठन में सहायता करते। सरकार 10,000 एपीओ गठन और ओकर संवर्धन योजना के माध्यम ले करत हवे। एपीओ के गठन ला प्रोत्साहित करत हवे। एकर अंतर्गत वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, उमन के कौशल विकास, क्षमता के विकास के सुविधा घलो प्रदान किए जाते। त किसान दादा हो, एपीओ किसान मन ला आत्मनिर्भर बनाए के दिशा में एक ठन महत्वपूर्ण कदम हवे। एकर माध्यम ले किसान मन ला सौदाबाजी करे के, तोल मोल करे के क्षमता बाढ़ते, आय में वृद्धि होते, संग में कृषि व्यवसाय ला नवा मजबूती मिलते। एकर बर किसान मन ला संगठित होके एपीओ के गठन करना चाहिए और अपन स्वयं की कंपनी बना के कृषि क्षेत्र में नवा सफलता की ऊंचाई प्राप्त करके अपन पहचान बनाना चाहिए। काबर किसान के दम में ही सगरो संसार चलते, ये बात प्रमाणित हवे। काबर किसान जब अन्न नहीं उपजाही, अपन डोली खेत ला जोताई करके अपन फसल नहीं उपजाही, तो दुनिया के देश या देशेज के मनखे मला भोजन दू बखत के नहीं मिले पाए। कतको बड़े बड़े कल कारखाना फैक्ट्री हो जाए ले का लोहा, सोना चांदी, अभ्रक, तांबा, पीतल और ये सब प्लास्टिक ये मला खा के जिए थोड़े सकबो। हमला 10 प्रकार के बूता करबो, यहाँ ले मंगल ग्रह को ले पर जाबो, लेकिन पेट ला भरे बर हमला किसान करा ही देखे बर पड़ी। तो दादा हो, जय हो भूगी भुइया के भगवान। अब चला मौसम के गोट बाटे घर कर ले जाए। किसान और मौसम, किसानी बूता और मौसम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओकरे बर कहे जाते कि भारतीय कृषि मानसून के जुआ हवे। बढ़िया हो गए मानसून तो किसान के माला माल, और नहीं हो तो फिर ठन ठन गोपाल। तो किसान दादा हो, 15 जून छिंगल गए, आज 16 जून हो गए। धरती माँ ऐसों पर पानी के छारा तो पड़ गए हवे, जैसे गर्म तवा में तवा चरण करते और ताप और ज़्यादा होकर उमस बढ़ जाते, वैसने बागिर होते। उम्मीद हवे मानसून बढ़िया आही, तापमान कम हो ही। आज के तापमान ला कहिए दादा हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के मौसम प्रयोगशाला कोती के विशेषज्ञ मिले मिले यांत्रिक गणना के आधार में आज के अधिकतम तापमान रही 40 सेंटीग्रेड, अभी कम हो के नाम नहीं लिसे, और न्यूनतम तापमान रही 26 सेंटीग्रेड। आद्रता माने नमी बिहनिया 7 बजिया कस रही 71%। जोन है बेर चघत की बेर घाम में झुरा झुरी के मझनिया 2 बजिया कस 43% बाँचे रहीस। हवा के गति सुते सुते चलत रहीस 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले उत्तर ले पूर्व दिशा की यात्रा में रहीस। ये तो हो गए दादा हो मौसम के हाल चाल। अब गोट बाट करबो दादा हो आज के नसीहत के। तो तेकर पहली मैं कहत रही कि हमार किसान दादा खेती किसानी के डहर में किसान मन ऐसने ऐसने काम करत हावे कि आज वह दूसर मन में प्रेरणा बनत हावे। ऐसने किसान मन की खोज ढूंढ में हमन मन हमर किसान वाणी हमर चौपाल विभाग मन रहते और किसान मन के श्रम गाथा कि ओमन कैसे अपन की ये कहानी ल कहत हावे, का का में ताना बाना फंसे हावे, कैसे बूता काम करत हावे, ये सब ल संजो के बहुत संक्षिप्त में मात्र 5 से 10 मिनट के माझा में ओमन के गोट बाट करके आप मन तक पहुँचा के प्रयास करथन। एक क्रम में ददा हो आज ऐसने किसान करा भेंट करा हो आप मन जो न सबले ज़्यादा उपयोग किए जाए वाला फल, सबले ज़्यादा बिचाए वाला फल और साल भर मिलो या फल, मैं बात करत हूँ दादा हो केला के, एकर खेती करते और ऐसने किसान मन के चलते ये स्वादिष्ट पौष्टिक फल साल भर मिले पाते। त केला के खेती में का का और कैसे कैसे करना पड़ते एला किसान की जुबानी सुना जाए, ये सुनाओ आज के किसान। आकाशवाणी रायगढ़ सुनैया जम्मो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। दादा हो सूचना क्रांति के दौर है, आकाशवाणी के प्रयास उन्नत किसान और ग्रामीण विकास। इस प्रयास में आए हवे आकाशवाणी तुम्हार द्वार में उन्नत प्रगतिशील किसान मन की कार्यशैली विचारधारा ला आप मन तक पहुँचाए के प्रयास करथन, जो न दूसर व्यवसायी दूसर किसान मन में प्रेरणा बनते। ये क्रम में संगवारी हो परंपरागत खेती ले हट के आज किसान व्यवसायिक खेती करत है, उद्यानिकी खेती करत है, एकांतर क्रम में फसल लगा के आधुनिक तकनीक ले नवा नवा खेती करत है। तो आज भेटाए हमें एक ठो केला के उन्नत खेती करोइया हमारे किसान। तो चला किसान के श्रम गाथा के कहानी सुनी, किसान के जुबानी आज के किसान। तो किसान दादा हमारे कति ले आप मल राम राम।
2: राम राम नमस्कार।
1: अपन के नाम बताइया।
2: मोर नाम सरोज गुप्ता, ग्राम पोस्ट लोहर सिंह।
1: अच्छा, तो आप मन अभी काबू तक काम कर रहा था?
2: अभी पूरा टाइम खेती में देता हूँ, पूरा टाइम
1: खेती में। तो हाँ। खेती में अभी क्या फसल लेता आप मन के फार्म में? तो पूरा यहाँ वहाँ जहाँ देखा सब कभी केला केला दिखाई दे थे।
2: हाँ, अभी के पूरा फसल केला से लगी से, और कुछ जो मैदान रही जिन में पहले हमन गोभी खीरा तरबूज गोभी खीरा बैगन टमाटर ये सब लेते रहन, ओला बदल के भी उनमें भी हमन केला लगाए हैं, और कुछ जमीन ऐसे है भी जिनमें हमेशा धान की खेती होती रही।
1: अच्छा।
2: उनमें भी हमन केला लगाए हैं।
1: अच्छा, मैंने वो जो उनमें कहते हैं परंपरागत खेती जो हमारे ओला हट के आज उद्यानिकी बागवानी फलोद्यान ये सब मन की खेती मैंने करा था आप मन।
2: हाँ,
1: तो ये सब आधुनिक तकनीक ले जैसे हमन के हैं नवा नवा तकनीक आज जाते, तो आप मन तो ठीक है कि पहले दूसर फसल लगाता रहा सब्जी भाजी की करत रहा।
2: हाँ।
1: सब्जी भाजी मन ज्यादा से ज्यादा कतका दिन तक मन ये चलते एक बार लगा था?
2: सब्जी भाजी फसल के हिसाब से जैसे कि बैगन टमाटर हो इसे मन 3-4 महीना 5 महीना के फसल ले, लौकी खीरा हो इन्हें मन 2 महीना 2.5 महीना के फसल ले, तो गोभी हो 3 महीना के फसल ले, ये सब फसल मन ला अभी एक बदल के
1: मैंने साल में आप मन ये फसल मन एक अंतर क्रम ले मैंने सब ले सकता।
2: हाँ, ले सकत हैं।
1: लेकिन ये केला है तो माने उसने वो 3-4 महीना 5 महीना में बदल दे वाला होइस नहीं है?
2: लंबा समय की खेती, ये थोड़े लंबा समय की खेती है। कबर एला लगाए के बाद हमला 9 महीना में पहला फल हर मिल ही।
1: अच्छा।
2: ओकर बाद ओकर अगले 7वां महीना में दूसरा हर।
1: अच्छा।
2: फिर ओकर बाद वो दिन ठीक फिर 7वां महीना में फिर तीसरा हर।
1: अच्छा, माने जैसे कहते हैं केला में एक ठो माने जो केला के पेड़ है।
2: हाँ।
1: वो में एक बार लगी।
2: हाँ।
1: उकर बाद वो काट देता।
2: हाँ, नहीं, हाँ काट देता नहीं भी काटन पूरा।
1: हाँ।
2: और जो एक केला है वो में एक बार ही फल मिली।
1: हाँ।
2: बाकी उकर जो पीला मन रही।
1: हाँ।
2: वो पीला हर फिर एक ठीक म्यारी मन ही।
1: अच्छा, वो है फिर 7 महीना अगला लगे।
2: हाँ, फिर 7 महीना लगे।
1: अच्छा,
2: तो 2 महीना के थोड़े से वो ये फायदा मिल जाते काबर के लिए कि जुन उकर जुन पीला है निकलते।
1: हाँ।
2: 4-5 निकलते।
1: हाँ।
2: तो मैं कि एक ठेला रखना रहते हैं मल्ला।
1: अच्छा,
2: वो बाकी ताले एक ठेला मतलब 4-5 के खाना ला एक ही जी अब पाते।
1: हाँ।
2: तो उकर बाद ना वो पौधा जल्दी ग्रोथ कर।

0: तो दो महीना के हम थोड़े से
1: जल्दी
0: जल्दी फायदा
1: जो 9 महीना होते हैं 7 महीना
0: में रहते
1: हैं। अच्छा, तो जब एक माने हम चर्चा कर रहे थे तो पहले ये बताइए हमला एक केला लगा के पहले खेत की तैयारी आप मला कैसे करे बर पड़ती है।
0: खेत की तैयारी अब हमारे दो जगह में मतलब दो प्रकार के खेत है, एक ठो मैदान भी है और एक ठो जो धान वाला डोली है तैयार भी है। तो दोनों मतलब जुताई तो सब लोग बढ़िया अच्छा गहरा जुताई करना पड़ते हैं, रोटावेटर चला के और बाद जो भी ढेला मना हाँ मिट्टी एकदम भुरभुरा करके और जो भी आवश्यक सबले जरूरी चीज तो गोबर खाद जो ना एकदम कम हो जाते हैं। हमन पशुपालन ला ध्यान नहीं देते हैं लेकिन खेती अगर जहाँ होते ना पशुपालन नहीं हुई तो खेती लगभग लगभग असंभव है।
1: अच्छा, तो इमें अपन जैसे कि तो खेत की तैयारी के विषय में बताओ, अगर बात पार बना था ठीक है और तो हम मल्चिंग भी मने में करता। हाँ,
0: मल्चिंग पेपर भी डालते हैं खबर की जो हम जो खरपतवार रहते जो घास रहते
1: मल्चिंग में खत्म नष्ट हो
0: हाँ वो नष्ट हो हाँ पनपे नहीं पानी हो गए
1: और बाद में ड्रिप के
0: ड्रिप इरिगेशन पाइप बिछा देते हैं और जितकी पानी की आवश्यकता रहती है जोन पौधा ला जोन फसल ला जितकी आवश्यकता रहती
1: है तो कंट्रोल कंट्रोल में प्रेशर में अच्छा। तो इमें तो हम तैयारी के भी देखें चर्चा करें। अब इमें केला की बात आते तो केला अपन कौन प्रजाति के मन रखे, टिश्यू कल्चर है या बीजी मन का?
0: टिश्यू कल्चर है।
1: टिश्यू कल्चर कहाँ मांगा था
0: हमन जितकी क्या कहते हैं कृषि विज्ञान एक मन रहते हैं हमारे यहाँ रायगढ़ में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है सब चीज सलाह भी करते हैं और रायपुर ला ही हमन संपर्क करते हैं
1: नजदीक में।
0: हाँ नजदीक में रायपुर और ओमन हमला जो भी टिश्यू कल्चर ओमन या करके देते हैं या जैसे कि बाहर गुजरात हो या जो भी ओमन मंगा के बना के ओमन देते हैं।
1: अच्छा, तो एला आप मन पे लगा कि जो मने मल्चिंग कर रहा था में छेदा लगे रहते छेदा मन में लगा था तो एला लगाए कि कौन समय मने होते?
0: केला लगाए के अब समय बढ़िया समय तो एक तो जून जून जुलाई एक तो पहला
1: हाँ।
0: और एक तो जनवरी फरवरी।
1: अच्छा,
0: ये दो समय में हमन केला लगाते हैं तो अच्छा सरवाइव करते और अच्छा बढ़िया कर ग्रोथ होते।
1: तो अभी हम जैसे मने पहुंच गए हैं अब मने फिर जून जुलाई तो लगभग लगभग साल भर होने वाला है अभी अप्रैल में मने जैसे मने चला था तो पहली अभी फलत होती आप मन के केला बन के
0: पहला है
1: पहला है
0: हाँ।
1: तो बहुत बढ़िया ग्रोथ करा था विकास करा था ये मन में तो मैं खास करके आप मैं कहा लगते है कि केला की खेती में का सावधानी रखे बर पड़ते है?
0: केला की खेती में लगभग पानी के थोड़े से ज्यादा जरूरत पड़ते लेकिन इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं पड़े मतलब ओला रोज पानी चाहिए। अच्छा। जितकी उकर मात्रा है एक ठी पौधा ला जिसे डेली के हमन अगर 2 लीटर दे थन पानी तो दो लीटर ओला डेली चाहिए जिसे अभी गर्मी के दिन आ गिस ना गर्मी के दिन में थोड़े ज्यादा चाहिए रहते पानी और थोड़े से तापमान हर भी बढ़त जाते पानी क्या थोड़े से ज्यादा जरूरत रहती है।
1: केला की पत्ता मन चौड़ा चौड़ा पत्ता रहते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मन वर्षा माने जो वर्षा क्षेत्र रहते ज्यादा पानी गिरते वो क्षेत्र मन के रहते तो ये मन के पत्ता मन ऐसे चिकना रहता है कि पानी गिरीस माने बहा गिस और पत्ता चौड़ा हो के मतलब ये है कि ज्यादा सूर्य के प्रकाश से मन के ऊपर में पड़ता है मन ज्यादा अवशोषित करते हैं और ज्यादा ओकरे चलते मन के फल गुदादार और ज्यादा माने पोषक मिठाई युक्त मन रहते तो ये मतलब आप मन जैसे कि जो भूया मिला थे मला तो ते मिला थे लेकिन बाहरी आप मन मला का दे
0: हाँ, बाहरी इमला जो भी खाद कर रहे जैसे पोटास हो इस पोटास के ज्यादा मात्रा लागते है मैं कहा।
1: अच्छा।
0: और बाद यूरिया यूरिया तो बहुत कम मात्रा में लागते
1: हाँ।
0: नाइट्रोजन है
1: हाँ।
0: पोटास है बहुत ज्यादा फास्फोरस फास्फोरस भी लागते
1: हाँ।
0: तो सबले पहले जैसे खेत शुरू ले भी गोबर खाद तो पहले जो
1: माने आधार खाद के रूप में माने जो डीएपी
0: हाँ डीएपी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर हाँ, गोबर खाद के संग में जो भी हमारे बैक्टीरिया मन रहते हैं
1: हाँ,
0: वो मतलब खेत में छिड़क देते हैं जो बेड बनाए खानी
1: हाँ,
0: और उकर बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व तो रहते हैं वो ला दे देते
1: हैं
0: और उकर बाद जैसे पौधा छोटे रहते तो ज्यादा खाना खाए सके नहीं
1: हाँ,
0: जैसे जैसे बढ़त जाते तो अगर खाना ला धीरे धीरे बढ़ा जाते ना
1: तो ये पोषक तत्व की बात होगी। अब जैसे कि पौधा मन मन आप बढ़े रहते हैं तो कुंजन वातावरण में खुला वातावरण में है अलग अलग जगह के पर्यावरण अलग अलग रहते तो रोग व्याधि भी लगत हुई मन में
0: हाँ।
1: तो ये मन के आप मन कैसे जानकारी होती कैसे
0: इमें कृषि वैज्ञानिक मन संग जो है रायगढ़ में भी रायपुर में भी उमन संग बीच बीच में सलाह लेते रहते हैं
1: मोबाइल ऐप फोटो वाला फोटो खींच के
0: भेज देते
1: हैं डाल देवा की मैंने पूछा ये समस्या का समाधान क्या होता
0: है तो सब थोड़े से जल्दी जल्दी मिल जाते हैं।
1: ये आधुनिक तकनीक के मैंने जो

0: ये है। और आजकल तो कई प्रकार के माने इसने तकनीक आधुनिक तकनीक में आज जाते तो आप मन केला में है, तो इमें जैसे दवाई वाई छिड़काव करना पड़ते आप मला, तो दवाई फिर मैनुअली छिड़काव करता कि माने ये तो पानी में डाल घोल के तो डालत बनत नहीं हुई।
1: नहीं, जो भी खाद है तेलर जो पानी में, वो तो पानी में छोड़कर ड्रिप में चल देते का। जो भी ऊपर ले स्प्रे में दवाई करना रहते तो टंकी वाला जो पीठ में बोहे वाला जो पावर पंप रहते वो में थोड़े केला के हाइट बढ़ जाते ना, तो हमें थोड़ी दिक्कत
0: अच्छा,
1: होते
0: दिक्कत
1: हो तो हमारे टी एक टी पावर स्प्रे है इधर पेट्रोल से चलते समझा। ये में चार आदमी आराम से जाके दो टी पाइप करके ना दोनों साइड ले आराम से स्प्रे करते हैं। एक बाद जिसे की ज्यादा और एकदम जल्दी में कराना है कुछ तो ड्रोन की भी व्यवस्था है, जिसे आजकल तो कई महिला समिति मन भी अपन ड्रोन के प्रशिक्षण ले थे और चलाते हैं, हालांकि एक्सपर्ट
0: मने
1: हाँ, ड्रोन ले भी स्प्रे करवा
0: मैंने आधुनिक, जैसे हम कहते हैं आधुनिक तकनीक के और यांत्रिक जो मैंने खेती किसानी के बनाते यंत्र वो सबो यंत्र मन के आप मन प्रयोग करत है।
1: हाँ, धीरे धीरे सबके एक अच्छी अनुभव करत जाते हैं।
0: तो इकर केला के बारे में चर्चा करबो तो हमला दो तीन घंटा कम हो जाइए, हमला सीमित समय में चर्चा लगाने रखना है। तो आखिर की मैं ये पूछा तो इकर आप मन केला अतकी मात्रा में लगाए के उद्देश्य का है? आप मन
1: केला लगाए के उद्देश्य एक तो हमर मिट्टी ला एक बार
0: नया हमर क्षेत्र के जलवायु मन केला उपयुक्त है।
1: हमर क्षेत्र के जलवायु उपयुक्त है, काबर जितकी ज्यादा हमन का कहते हैं भपका वाला हुमस वाला ह्यूमिडिटी जितकी उमस वाला रही ना केला, केला के ग्रोथ हर उतकी बढ़िया होते।
0: हाँ,
1: और पानी होना है और उमस।
0: हाँ, अच्छा यहाँ के माटी भी केला की उपयुक्त है केला लगा के?
1: हाँ, मिट्टी परीक्षण करा रहे हैं तो उपयुक्त है, केला पर उपयुक्त है।
0: और बाजार तो एक हेज भी आओ, केला, केला के बाजार तो हमारे देश में ऐसे कोनो ठौर नहीं हुई जहाँ कर केला का बाजार नहीं है। कबर हर प्रकार के उत्सव में मैंने प्रयोग होते, चाहे पूजा हो चाहे मैंने दशकर्म हो मैंने कोई भी मैंने ये फल
1: शारीरिक फल के रूप में शारीरिक फिटनेस
0: स्वास्थ्य के रूप में भी तो औषधि के रूप में भी आपन बताते रहे प्रयोग किए जाते।
1: हाँ, कुछ वैरायटी ऐसे भी है जो ना औषधि के रूप में कुछ मेडिकल कंपनी वाला मन भी उकर अलग से खेती करवाते हैं, कुछ अलग प्रकार के केला रहते हैं।
0: अच्छा,
1: वोला भी अपन खेती करवा के मन अपने एग्रीमेंट में वे करते हैं और अलग वो प्रकार के
0: लाइन में जैसे अखबार तोरण में होते। तो चलो संगवारी बहुत बढ़िया आप मन मैंने बतावा, वैसे तो पूरा जानकारी मैंने नहीं हुई आप मन ले आओ चर्चा मैंने आगे हम करबो। आज बहुत बढ़िया जानकारी देवा केला की खेती में आधुनिक तकनीक अपना के आप मन जो यंत्र मन के उपयोग कर रहा था आओ जो मार्केट ले जानते बुझते हुए आओ आस पास के हमार क्लाइमेट है जो वातावरण है ओकर हिसाब ले केला के उन्नत खेती कर रहा था, तो आप मन एक निश्चित फायदा हुई ऐसे विश्वास के संग संग आकाशवाणी रायगढ़ आप मन के सुखद भविष्य की कामना करते आप मल हमर गति ले राम राम जय जोहार
1: जय जोहार।
0: हाँ, ये रिहिस दे दहो केला सुहा थे जमो बेला। तो संगवारी हो चाहे कोई भी आजकल के मने उत्सव हो, चाहे धार्मिक उत्सव हो सामाजिक उत्सव हो छठी हो बरही हो दशकर्म हो सबों में केला पोसे जाते और हर बखत हर मने आवश्यकता पड़ते, तो आज बहुत बढ़िया एक व्यवसाय हो सकत है। तो आप मन भी ऐसे कोशिश करके लगाओ संगवारी हो। अब चलो दादा हो गोट करी आज के नसीहत के जो न कहते बीज जनित रोगों से बचाव का कारगर उपाय बीजोपचार। तो किसान दादा हो लइका मन बर जितकी आवश्यकता टीकाकरण के होते उतकी महत्व फसल में बीजोपचार के होते। टीकाकरण जिसे प्रारंभिक अवस्था में लइका मन ले सुरक्षा करते उसने प्रकार ले बीजोपचार प्रारंभिक अवस्था में पौधा मन के सुरक्षा करते। दादा हो कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाए बर गुणवत्तापूर्ण बीज के चयन जतका महत्वपूर्ण हवे उतकी आवश्यकता बीज मन के उपचार के आवश्यकता हवे। बीज के माध्यम ले ही रोग और कीट खेत में प्रवेश कर जाते हैं, जाकर चलते बीज के अंकुरण क्षमता प्रभावित होते और फसल उत्पादन में कमी होए बर धरते। दादा हो बीजोपचार एक ठन फसल सरल सस्ता और प्रभावी उपाय हवे जो न बीज जनित रोग के संग प्रारंभिक अवस्था में फसल मल्ला कीट मल्ले सुरक्षा देते। तो दादा और ये गंभीरता ले थोड़े से और बीजोपचार के महत्व वाला समझबो कबो तो बीजोपचार ले बीजोपचार अंकुरण क्षमता में वृद्धि होते, फफूंद जीवाणु और दूसर रोग ये फसल के सुरक्षा एमले सुरक्षा करते, पौधा मन में प्रारंभिक वृद्धि में सुधार होते, रासायनिक दवाई के छिड़काव की आवश्यकता कम पड़ते, फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में घलो वृद्धि होते सुधार होते, फसल लागत में कमी आते और उत्पादन लाभ ज़्यादा प्राप्त

होते। अब ददा हो बीज उपचार के विधि का होते, तो पहली तो रासायनिक बीज उपचार, इमें फफूंद जनित रोग की रोकथाम बर कार्बेंडाजिम, थायराम, मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम जैसे रसायन मन के अनुशंसित मात्रा प्रयोग किए जाते, और सामान्यतः 2 से 3 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज दर के उपचार करना चाहिए। और कैसे तो अपन अपन के हिसाब ले कई तो तरीका हो सकत है, एला डब्बा में भर के 1 किलो बीज ला भर देवा और 2 से 3 ग्राम एमला डाल देवा और डब्बा ला उल्टा पलटा करके घुमा घुमी के अलावा इमें हो जाई, या तो सान सकत हन, या तो बोरा ला हम बोरा में दूजी एती होती लड़का वाला जैसे पकड़ के हाथ गोल पकड़ के झुलाथन, वैसे प्रकार के दाना ला बीज के दाना ला डाल के ओमें जोन मात्रा में डाले डाल के आगू पीछू ए ले तेन ले मे ले करिया तो फिर सब सना के तैयार हो जाते। हाँ दादा, दवाई के उपयोग कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अब दूसर में जैविक बीजोपचार, ये डहर में बीजोपचार बर ट्राइकोडर्मा, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम और PSB कल्चर जैसे जैव उर्वरक मन के उपयोग किए जाते। इकर ले रोग नियंत्रण के संग संग पौधा मल्ला पोषक तत्व भी मिल जाते। अब दादा, बीजोपचार करे खानी का सावधानी रखना चाहिए, तब पहली तो ये केवल प्रमाणित और स्वस्थ बीज के उपयोग करना चाहिए, अनुशंसित मात्रा में ही दवाई के उपयोग करना चाहिए, उपचारित बीज मल्ला छायादार स्थान में ही सुखा के जल्दी बुआई करना चाहिए। जैविक और रासायनिक उपचार के बीच अगर दोनों लोग करे बर पड़त है तो ये बीच में उचित अंतराल रखना चाहिए। कुल मिला के सार बात दहो, बीज उपचार है फसल के सुरक्षा के प्रथम और सबले महत्वपूर्ण उपाय हवे। यह बीज जनित रोग ले बचाव के एक ठन सुरक्षित कारगर और किफायती और पर्यावरण के अनुकूल हवे। किसान दादा हो, यदि बुआई के पहली बीज के उचित उपचार कर लिए जाए तो स्वस्थ पौधा के संग संग ज़्यादा उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त किए जा सकत हवे। एकर बस स्वस्थ बीज सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान के उद्देश्य से लगे साकार किए जा सकत है, बीज उपचार ला जरूर कराना चाहिए। तो ये तो हो गए दादा हो बीजोपचार के गोटबाट आज के नसीहत के। हाँ दादा हो, चर्चा के विषय एक ठो रही से मैं पहली बता देता हूँ। किसान दादा हो, नवा फसल के दिन आगे बीजा भोथरा राखड़ खातु लेहे बढ़ावे, खेती में संग देवैया यंत्र तंत्र मन के सुधार करे बढ़ावे, पैसा कहाँ ले आई तो दादा हो टेंशन खत्म। हमार सरकार डहर ले 20 जून के आवत हवे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 23वां किस्त। हाँ, 23वां किस्त 20 जून के 2000 रुपया के राशि सीधा तुम्हार बैंक खाता में आ जाही। अब फिर जोन ओकर हाट बाजार करना है, जोन भी राखड़ का तू बीज खरीदना हवे, आप मार आसानी ले खरीद सकत हो संगवारी हो। तो ये तो हो दादा हो एक संदेश। तो मैं कहत रहे कि इकरा थोड़कन सुरता थेन और जब हम खेती किसानी की गोट करा थन, किसान वाणी की बैठकी में बैठे हमन, तो हमार मुख्य बूता रथे फसल उगाना। और फसल हम कहाँ उगा थन तो दादा वो हम धरती माता में भुइयां में उगा थन। ओकरे बाद धरती ला यहाँ ले हम सकल कर्म कर थन, ये हमला भोजन देते पानी देते हमारे जीवन के सकल कर्म ला करते। एकर बाद धरती ला हम माता कथन, तो ये धरती माता के जब हम जतन नहीं करबो, एकर सुरक्षा नहीं करबो, जैसे कि खेत आज हमन अभियान चला थन का खेत बचाओ अभियान, वह अभियान है एक अंतर्गत हावे कि हमन ज़्यादा रासायनिक उर्वरक राखड़ खातु या भूमि के कटाव या औ कछु ऐसे उपक्रम हावे जाकर चलते भूइया के उर्वरा क्षमता कम होते, ये मतलब सब मतलब बंद करना चाहिए। तो चलो धरती ला धरती के जतन करे के धरती ला संवारे के घुरुआ राम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में एक बढ़िया अकन के गीत सुनी जाकर बोल हावे जतन

जतन करो भूया के संग जतन करो रे, जतन करो धरती के संग जतन करो रे, जतन करो भूया के

आहा, मोर जतन करो धरती के, मैं माटी महतारी हूँ। सच में ददहो धरती भूमि, धरती माता हमर महतारी हावे। और एकर सुख दुख में, एकर मने जैसे अभी बरसात के दिन आते ददहो, तो हमारा पेड़ लगा के, ज़्यादा ले ज़्यादा पेड़ लगा के हमारा एकर श्रृंगार करना चाहिए, एकर देख रेख मने करना चाहिए संगवारी हो। अब चलो ददहो आज के टिप के गोट किया जाए जोनहर। धरती माता के श्रृंगार बर ही, धरती माता ला बचाए बर ही एक ठी उपक्रम हावे, जाकर विषय ये हावे कि रासायनिक खादों का सशक्त विकल्प वर्मी कंपोस्ट, खेत बचाओ अभियान। तो किसान दादा हो, आज के सबले बड़का आवश्यकता खेत बचाए के हावे। खेत ला हमला पशु पक्षी मन ले बचाना नहीं हावे, इला हमला रासायनिक उर्वरक दवा कटाव ले बचाना हावे। दादा हो, हरित क्रांति के बाद कृषि में उत्पादक बढ़ाए भर रासायनिक उर्वरक मन के उपयोग होइस तो कृषि उत्पादन में तो वृद्धि

माध्यम ले किसान मन ला जैविक खेती अउ वर्मी कंपोस्ट के उपयोग बर प्रेरित किए जात हवे। दादा वो सबो जानत हवा तभो ले एक घाव जानी कि वर्मी कंपोस्ट का हवे। तदो वर्मी कंपोस्ट केचुआ मन के द्वारा तैयार किए गए वाला जैविक खाद हवे। एमा गोबर, फसल अवशेष, पान पताई और दूसर जैविक पदार्थ मन विशेष प्रकार के केचुआ मन के सहायता ले विघटित करके उच्च गुणवत्ता वाला खाद तैयार किए जाते। ये खाद में पौधा मन बर आवश्यक पोषक तत्व ले भरपूर मात्रा होते। माटी के संरचना ला सुधारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तथा वो वर्मी कंपोस्ट में का विशेषता होते तो एमा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जोन ला हम NPK कथन, एकर संग संग सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते। एमा माटी के जल धारण क्षमता ला बढ़ाते, संग में भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ावे में सहायता करते। पौधा की जड़ मल्ला मजबूत बनाते, ऊपर पौधा तक सही मात्रा और उचित पोषक तत्व पहुँचाते। फसल में गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होते। पर्यावरण में सुरक्षित और पूर्णतः प्राकृतिक खाद हावी है। तदो रासायनिक खाद के विकल्प बार खोजे जाए तो ये कह सकत हन हमन कि वर्मी कंपोस्ट हर एक ठन अत्यंत महत्वपूर्ण हवे। और ये दूसर चीज ये देखा जाए कि रासायनिक खाद ले विकल्प के रूप में वर्मी कंपोस्ट काबर मने हर उचित हवे। तो एकर और देखा वर्मी कंपोस्ट के विशेषता ला तो सबो अभी समझेन ऊपर में। अब रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव देखा, माटी के उर्वरकता में ह्रास होते, लाभकारी सूक्ष्म जीव मन नष्ट होते, जल स्रोत मन प्रदूषित होते, उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि कराते, काबर हर बार पहली ले ज़्यादा मात्रा में उर्वरक देना मजबूरी हो जाते, मनखे मन के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ते, भूमि की संरचना बिगड़ते और भूइयां कठोर हो बल लगते, रासायनिक खाद मन के कारण कई रासायनिक कारण हावे कि ये सबो समस्या ले बचे बर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गए हावे। आज हमारे भोजन में घोले पहली जैसे स्वाद नहीं है, पहली जैसे हमला ऊर्जा नहीं दे सके, काबर ये सब रासायनिक खाद मन के उपयोग खातिर हम ओकर स्वाद ला बिगाड़ चुके हैं। अब दादा हो खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य, एकर मुख्य उद्देश्य किसान मन ला रासायनिक खेती के दुष्परिणाम ले अवगत करा, जैविक और प्राकृतिक खेती कोती प्रेरित करना हवे। एकर मुख्य लक्ष्य हवे कि माटी के उर्वरता के संरक्षण, जैविक कार्बन के मात्रा में वृद्धि, रासायनिक उर्वरक मन के निर्भरता कम करना और किसान मन के उत्पादन लागत कम करना, पर्यावरण ला संरक्षित करना, संरक्षण में ओकर बढ़ावा देना, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करना हवे। कुल मिला के दहो खेत बचाओ अभियान केवल कार्यक्रम नहीं होए बल्कि भविष्य की कृषि ला खेत ला सुरक्षित रखे के एक ठन जन आंदोलन हावे। अमे सब ला शामिल होके खेत बचाओ अभियान ला सफल बनाना हावे। अच्छा दादा अतकी गोट बात करे न तो वो कृषक प्रश्न मंच एक रहते परीक्षा के मने वाला तो प्रश्न लिख ले रहा था। तो प्रश्न ये हावे कि अच्छा सिलेट पेंसिल कापी फोल्डिंग लेकर मन तो अभी धरीन हुई नवा नवा आज के दिन शुरू हुई स्कूल तो तैयार रखे हुई है। कोई भी तीन ठन जैविक बीजोपचार दवाई के नाम बतावा, कोई भी तीन ठन जैविक बीजोपचार करे वाला दवाई के नाम बतावा। अब ये ला जाना तो है हमारा आकाशवाणी के पता और ईमेल में खोले आप मन डाल सका था और चिट्ठी के माध्यम ले भी लिख सका था। आप मन के चिट्ठी पत्री ला जरूर शामिल करवो। तो ये होगी इस गोट बाट, तो एक घाव विराम देते हैं गोट बाट ला। और मैं ये कहते रहे जब खेती किसानी की गोट बाट चला थे शुरू में भूया के जतन करो के गाना सुनैन घुरुआ राम मरकान दुखिया भाई के, तो ये खेती किसानी काबर जरूरी हवे। और खेती किसानी जैसे कोई दूसर काम करो या मनखे अपन काम ला मन लगा के करते, किसान कैसे मन लगा के करते और कैसे किसान के मन ला झुमाते और कैसे बादल ला देखते किसान तो ओकर मन में काका उमड़ते घुमरते। तो प्रकाश देवांगन और माया खापड़े के स्वर में ये सुना जाए एक सुघर लोकगीत।

वो करोड़ों प्रवासी श्रमिक जोन मन देश ले बाहर काम करते हैं, ये मन के योगदान ला सम्मान देना हवे। जोन मन अपन परिवार के बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर अपन के आय के एक हिस्सा नियमित रूप ले घर भेजते हैं, माने देश के बाहर रहोया मन के जब पैसा वहाँ के राशि हमारे देश में भेजते, ई धन राशि जोन ला प्रेषण कहे जाते। यह कई ठन परिवार के आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनाए के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। दादा हो प्रेषण माने पठोए गए धन ले न केवल परिवार के दैनिक आवश्यकता के पूर्ति होते, बल्कि उनकर लैका मन के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास के संग और छोटे छोटे व्यवसाय मन के माँ भी निवेश करे के अवसर घोले बढ़ा देते। विकासशील देश मन के अर्थव्यवस्था में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देते। ये दिवस हमला प्रवासी श्रमिक मन के परिश्रम, त्याग और समर्पण ला याद करे के अवसर प्रदान करते। साथ ही साथ सुरक्षित, सुलभ और कम लागत वाला धन प्रेषण सेवा मन ला बढ़ावा देते के दे के संदेश देते। परिवार मन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण दिवस सामाजिक और आर्थिक विकास में परिवार मन पर और प्रवासी समुदाय मन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो ये होते परिवार के धन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस दादा हो। और दूसरा चर्चा के विषय हावे दादा हो, आज के सदी के सबले बड़खा गंभीर बीमारी लगभग अब परसेंट तो नहीं बता सको, बाकी बहुते मनखे मल है मधुमेह। तो विषय हावे मधुमेह से बचाव के लिए जीवन शैली में करें बदलाव। तो किसान दादा हो मधुमेह माने शुगर, शक्कर की बीमारी, जो ला अंग्रेजी में हम मीडियम के माध्यम से हम डायबिटीज कथन। यह आज के जीवन शैली, खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव और मोटापा के चलते बढ़े वाला बीमारी हावे दादा हो। इला हम स्वस्थ जीवन शैली अपना के खत्म कर सकत हन या कम कर सकत हन। स्वस्थ जीवन शैली ले कहेले का तो यह हावे संतुलित और पौष्टिक आहार के सेवन कराओ। भोजन में ज़्यादातर हरा साग भाजी, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल कराओ। ज़्यादा चीनी वाला, तले भुने और जंक फूड जैसे पैकेट में मिलते ये मन ले बचाव कर बचा। नियमित रूप से कम आधा घंटा व्यायाम, योग व्यायाम कराए या तेज चले के आधा डला। हाँ दादा हो 21 तारीख के योग दिवस भी मनाए जाते, सुरता हावे कि नहीं 21 जून के तो योग दिवस आत हावे। तो जरूर वो दिन आप मन जोन भी प्रचार प्रसार के माध्यम हावे, टीवी हावे, रेडियो हावे, समाचार पत्र हावे, ये मन ले देखिए कौन कौन तरीका ले कैसे कैसे योग किया जाता। वैसे तो रोज हमारे योग मनीषी मन मने टीवी में घोले आके रोज बताते हैं कि कैसे योग करना चाहिए। आजकल सीडी टीवी मन में घोले मिलते, वेबसाइट मन में, यूट्यूब मन में जाके घोले आप मन देख सकता है योग के तरीका माला। तो तुम्हारे शरीर जो है सुटेबल है या तुम्हारे बीमारी पर जो है कारगर है, वैसे योग के चुनिंदा योग माला कम से कम 30 मिनट तक जरूर करना चाहिए। अब एक संग तेज चले की आदत घोले डालना चाहिए, एक शरीर के वजन नियंत्रित हो, मोटापा कम होगी और खून में शर्करा के स्तर संतुलित रही। संग मदद हो पर्याप्त नींद लेना, तनाव ला नियंत्रित करना, धूम्रपान और शराब दारू जिसने हानिकारक आदत मन ले दूर रहना, यहू घोले कर बचाव के उपाय हावे। समय समय में अपन स्वास्थ्य के जांच करात रहे माँ मधुमेह के शुरुआती संकेत पता लगत की आवश्यक कदम उठाए ले इला रोके जा सकत हवे। दादा हो आज के भागम भाग वाला बाजारू जीवन शैली ले धुरिया स्वस्थ जीवन शैली ही मधुमेह ला हरा सकत हवे। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपना के हम स्वयं और अपन परिवार ले ये बीमारी ले सुरक्षित रख सकत हवन। तो गोटबाट ला एक हाव बीमा विराम दी और अभी तक जितका गोटबाट हुई से एक विषय में सोची और मैं ये कहत हूँ, जैसे कि आज हमन खेती किसानी के और भूया के धरती माता के गोट बाट करत हन, तो ये धरती के वंदना भी हमला करना चाहिए। काबर देखा हम छत्तीसगढ़ महतारी कहन, भारत माता कहन या धरती माता कहन, ये सब हमार माता है, हमार पालन पोषण करोया। तो एकर वंदना करना, एकर स्तुति करना, एकर सुमरणा करना, एकर आरती उतारना और एकर सुरक्षा करना हमार दायित्व तो बनते। तो संतोष शुक्ला और साथी मन के स्वर में मोर छत्तीसगढ़ के माटी बंदाऊँ, मोर छत्तीसगढ़ के माटी चलाओ ये लोग।

मुर छत्तीसगढ़ की माटी बंदो तोला बारंबार। सच में तो हो बारंबार 100 बार वंदना करे ले भी हमर एक उपकार एकर ये कर्ज कम नहीं हो देता हो। तो माँ के महत्व वाला समझत हो तो धरती माता के साजे बार संवारे बार हमन आज एक ठन उपक्रम कर सकत हन। पेड़ लगा के हम भुइया के ला संवार सकत हन, एकर वंदना आरती कर सकत हन। तो चलो दादा देखा जाए इतिहास में आज के दिन अब का हो यहाँ। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पुण्यतिथि आज के दिन दादा हो। तो किसान दादा हो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हमर देश के महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योगपति और समाज सुधारक रहिन।

अंबेडकर जन्म 2 अगस्त सन 1861 में हो रही और 16 जून माने आज के दिन 1944 में एकर देहावसान हो गए रहीस। इकर पुण्यतिथि के दिन राष्ट्र उकर विज्ञान शिक्षा और स्वदेशी उद्योग मन के विकास में दिए अमूल्य योगदान ला श्रद्धापूर्वक स्मरण करत हवे। दादा हो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ला आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक माने जाते। ये देश में वैज्ञानिक अनुसंधान ला नया डहर दिखाइन और युवा मन ला विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े की प्रेरणा प्रदान करीन। राय जी भारतीय स्वदेशी उद्योग मल्ला बढ़ावा देह के उद्देश्य ले बंगाल के मिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्क के स्थापना करीन, जो न हमारे देश के पहली स्वदेशी रासायनिक औषधि निर्माण कंपनी हावे। दादा हो राय जी खाली वैज्ञानिक नहीं रहन बल्कि राष्ट्रभक्त और समाजसेवी घलो रहन। इकर मानना रहीस कि विज्ञान के उपयोग और समाज आज देश के विकास भर होना चाहिए। इकर पुण्यतिथि हमला वैज्ञानिक सोच स्वदेशी भावना और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के संदेश देते। दादा हो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन आय वाला पीढ़ी मन पर प्रेरणा के स्रोत हावे। इकर आदर्श और योगदान सदा सदा भर स्मरणीय हावे वंदनीय हावे। ऐसने महापुरुष मला सत सत नमन हावे। आओ एक ठन महापुरुष संगवारी हो आज के दिन उग्र पुण्यतिथि हावे जोन ला हम ससम्मान देशबंधु के नाम ले जानथन। एकर नाम होते देशबंधु चित्रंजन दास। किसान दादा हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ठन ऐसने नाम होइस जाकर नाम लेत कि मन में गर्व के अनुभूति होती चित्रंजन दास। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रख्यात वकील और समाज सुधारक रहे। चित्रंजन दास जी के पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 जून के श्रद्धापूर्वक मनाए जाते। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 में हो रही। राष्ट्र और समाज के प्रति उनका समर्पण और त्याग के कारण इला देशबंधु अर्थात देश के मित्र घलो कहेगीस। बहुत कम देशभक्त मला ये उपाधि मिलीस हवे और इनका पूरा नाम होगे देशबंधु चित्रंजन दास। दादा हो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। चित्रंजन दास जी अपन सफल वकालत ला छोड़ के देश के सेवा ला अपन जीवन के लक्ष्य बनाइन। ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख समर्थक रहीन और स्वराज के स्थापना पर निरंतर प्रयास करत रहीन। वर्ष 1923 में ये मोतीलाल नेहरू के संग मिल के स्वराज पार्टी की स्थापना करीन जोन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष ला नवा डहर दीस। दादा हो चित्रंजन दास के निधन 16 जून 1925 में हो रही। उनकर पुण्यतिथि हमला देशभक्ति त्याग सेवा और राष्ट्रीय एकता के आदर्श ला अपनाए की प्रेरणा देते। राष्ट्र उनकर अमूल्य योगदान ला सदैव कृतज्ञता के संग संग स्मरण करत हवे सदा सदाले करत रही जब तक सूरज चांद रही। तो अश्ने महापुरुष मला ससत नमन है दादा हो। और चलो एक ठाऊ ये चरखा माँ के धार माँ एक ठन औ गीत ला धराई अनुराग ठाकुर के स्वर माँ। ये गीत पापी हर आए है तो कैसे का भाव में हवे तो ये सुनाओ पापी हर आए हवे अनुराग ठाकुर के स्वर में।

ई लोकगीत के संग संग दे हो जाए के बेला हो गए तो दार भात चूर गए और मोर कथा निपुर गए तो जाए के संग में दे दहो वर्षा के दिन आते तो चमचम चमचम बिजली चमकी ढमढम बादल ढोल बजाए रिमझिम रिमझिम वर्षा लेके वर्षा रानी गाती आए गुहार कराओ ऐसने जमो किसान और जाए के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।

किसान वाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अजय झिंगराज का लिखा गीत अदनान सामी की आवाज में।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम हैं राही प्यार के का गीत, स्वर थे अलका याग्निक और कुमार सानू के।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: ये थे कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म अकेले हम अकेले तुम में।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होते हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
7: scan.air@gmail.com पर हमें

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों

0: चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है।

0: अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और अनवर के गाये गीत से। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कौन

0: अभी आपने किनारा फिल्म में लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को सुना। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने।

0: वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जन कल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
2: जी,
3: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
2: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
3: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
2: जी।
3: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
2: जी।
3: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है। लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
2: जी।
3: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
2: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
3: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
2: जी।
3: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
2: जी।
3: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही

0: दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है। डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गांवा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने NDC टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को

0: हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है
1: जी
0: जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं
1: जी
0: उस पे उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता,
1: बिल्कुल
0: है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के लिए
1: जी
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड
1: जी
0: तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे, कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपने इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी,
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ साक्षात्कार कर रही थी

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम विविध संगीत।

0: विविध संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खां को।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से

0: मेट्रो। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

विविध संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया गीत, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुने आशा भोसले और गुलाम अली को, शायर हैं अहमद अनीस।

इसके साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। आइए पहला गीत सुने फिल्म सरस्वती चंद्र से, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

अनजान का लिखा ये गीत था। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए आवाज़ थी किशोर कुमार की और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर, संगीत रवि का है और फिल्म का नाम आँखें।

0: यादें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म मेरा साया से।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

गोरा और काला फिल्म का गीत आप सुने, स्वर थे मुकेश और लता मंगेशकर के, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम के अंत में आइए सुने लता मंगेशकर को फिल्म अमर प्रेम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, वहां पर इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही यादें कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: समाचारों के बाद आप सुनेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम और उसके पश्चात ठीक 11:40 पर हमारी और आपकी मुलाकात
2: है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishan multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishan project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursiong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।

रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल की सभा में सुबह 5:53 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।